वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपडेट करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को कोई सुधार नहीं करना है उन्हें भी एक बार फॉर्म को एडिट मोड में खोलकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग की अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज कर आवेदन सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो श्रोताओं, इसके साथ ही अब प्रातःकालीन सूचनाओं के कार्यक्रम नमस्कार कोटा से निशा धूत को अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश महावर की और संयोजन तेज राम मीणा का था।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनाओं का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शीर्षक गीत, और शीर्षक है घूंघट।

अभी आपने फिल्म जोगन में गीता दत्त को सुना। इस पारंपरिक गीत रचना को संगीत से सजाया था बूलो सी रानी ने। श्रोता, उसके साथ ही हम आपको आज कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं। आरोग्य वाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 13 मई यानी आज प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर बीएल गोचर से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 13 मई यानी आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 29411 42, कोटा का एसटीडी कोड रहेगा 0744। सूचना समाप्त हुई।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: शुरू अभी आपने सुना घूंघट के पट खोल तो रे पिया मिलेंगे, लेकिन यहाँ घूंघट नहीं खोलना चाह रही है। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम मदर इंडिया।

शकील बदायूनी की लिखी ये रचना आपने सुनी। नौशाद का संगीत था, फिल्म का नाम था मदर इंडिया और आवाज थी लता मंगेशकर की। श्रोताओ, जब चमकते चेहरे पर ये रेशम सा पर्दा आता है तो चंदा भी बादल की ओट में कहीं छुप जाता है। आज हम शीर्षक गीत में शीर्षक घूंघट को लेकर आपको गीत सुनवा रहे हैं।

घर वाली बाहर वाली। जी हाँ, ये थी फिल्म जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी विनोद राठौड़ और शंकर महादेवन की। समीर के लिखे हुए इस गीत को संगीत से सजाया था अन्नू मलिक ने। आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक है घूंघट। जी हाँ, घूंघट भी दोस्तों क्या कमाल की संस्कृति है। ओढ़ने वाला बेफिक्र रहता है और देखने वाला बेचैन रहता है।

0: गायिका बेला को आप सुन रहे थे फिल्म विजेता में।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो ये फटा है।
3: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
0: श्रोताओ, फिल्म संगीत में आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत, और आज का जो शीर्षक है वो है घूंघट। कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा तो शर्म का

अभी आप नदीम श्रवण का संगीत सुन रहे थे फिल्म हम है राही प्यार के। इस गीत को लिखा था समीर ने और आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। शीर्षक गीत था घूंघट। जी हाँ, घूंघट मात्र पर्दा नहीं, घूंघट नारी की शान है। यह नारी का मान और सम्मान है, मर्यादाओं की देहरी पर खड़ी नववधु की पहचान है। श्रोताओं, अब हम आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे देते हैं। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार यानी आज 13 मई को प्रातः 8:15 पर सजीव फोन इन का कार्यक्रम का विषय है पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर बीएल गोचर से बात कर सकते हैं। समय फिर से सुन लीजिए, बुधवार 13 मई यानी आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर 29411 42 और एसटीडी कोड 0744। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बुद्धी का ये चंबल चैनल है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित इन समाचार प्रभात को हम रिले कर रहे हैं।

0: और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P. शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है।

0: अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय

0: ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से

0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। सवेरे के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाएं। अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध, आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: आरोग्यवाणी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार, इस विषय को लेकर हम बात करेंगे और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BL गोचर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम।
4: नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, विषय से संबंधित अगर आपकी भी समस्या कोई है तो आप हमें तुरंत फोन करें। हमारे फोन नंबर है 29411 42 और फोन नंबर से पहले STD कोड 0744 अवश्य डायल करें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है पेट दर्द, मानव शरीर की जो संरचना है वो कई अंगों का समावेश है। हर अंग का अपना अपना कार्य है, अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन जब पेट की बात करते हैं तो शरीर के कितने भाग को हम पेट कह सकते हैं?
4: पेट दर्द जो है छाती के निचले हिस्से से लगाकर और कमर तक के पीछे जो अंग आते हैं इनमें जो दर्द पेट दर्द से संबंधित होता है।
2: अच्छा अच्छा।
4: और इसको हमारे मेडिकल टर्म में पेट के हिस्सों को 9 हिस्सों में बांटा गया है।
2: जी
4: हाँ। बीच का तो एपिगैस्ट्रियम कहलाता है, राइट साइड का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और नाभि के अराउंड एम्बिलिकल रीजन, दोनों तरफ लंबर रीजन, नीचे सुप्रापुबिक रीजन और राइट इलाइक फोसा और लेफ्ट इलाइक फोसा।
2: जी
4: जी सर, निकाल
2: लें जी। जबकि हम लोग तो समझते थे पेट यानी कि बस ये नाभि के आसपास का हिस्सा पेट हो गया, एक ही इस आम धारणा है, लेकिन 9 अंगों में मतलब 9 तरह से आपने पेट को परिभाषित किया है। तो अगर जब हम जैसे पेट दर्द की जब हम अगर

0: बात करते हैं तो पेट दर्द का क्या कारण होता है?
1: पेट दर्द के विभिन्न कारण होते हैं
0: जी।
1: सामान्यतः खाने पीने की गड़बड़ की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, या विषाक्त भोजन की वजह से पेट दर्द होता है। ये यूजुअली शरीर को आराम देने से और तरल पदार्थ पीने से ठीक हो जाता है,
0: ठीक भी हो जाता है।
1: और नहीं होता है तो फिर इसका डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके जो विभिन्न कारण है वो ये है कि जैसे नाभि के ऊपर मध्य में हो तो यहाँ पे गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, एपिगैस्ट्रिक हर्निया।
0: अच्छा।
1: और राइट साइड में हो तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारी, गॉल ब्लैडर में सूजन, गॉल ब्लैडर की पथरी, लीवर की कोई गिठान हो
0: जी।
1: और मध्य में हो तो अम्लायक रीजन में तो इसमें अपेंडिक्स की वजह से, मैकस डाइवर्टिकुलम की वजह से, हर्निया की वजह से होता है इसमें।
0: अच्छा।
1: और लेफ्ट साइड में हो तो ये स्प्लीन की बीमारी की वजह से, पैंक्रियाज की बीमारी की वजह से, और किडनी स्टोन डिजीज की वजह से होता है
0: जी।
1: और राइट लाइक फोसा में जो दर्द हो उसे मुख्य कारण अपेंडिसाइटिस की वजह से होता है, या आंतों की टीबी होती है उससे भी दर्द होता है
0: जी,
1: या कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस और रीजनलाइटिस की वजह से होता है। और नाभि के नीचे ब्लैडर की वजह से, ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से, पथरी की वजह से दर्द होता है। और दोनों तरफ इलाइक फोसा में जो है वो महिला वर्ग में जो है मच्छरदानी में सूजन या ट्यूब से सूजन जिसको साल पे एंजाइटिस करते हैं उनकी वजह से भी होता है
0: जी।
1: और एंडोमेट्रोसिस और गिठाने हो मच्छरदानी उनकी वजह से दर्द होता है। और इनमें जो सीरियस डिजीजेस हैं जो पेट दर्द तुरंत उसके लिए संपर्क करें डॉक्टर में, वो है एक तो कोई परफोरेशन हो जाए स्टोमक में हो जाए या ड्यूडेनम में हो जाए, या हाथ का कोई परफोरेशन हो जाए
0: जी,
1: या अपेंडिसाइटिस हो जाए, या गॉल ब्लैडर कोई स्टोन तो कोलेस्टाइटिस हो जाती है, पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है। और कई बार महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होती है वो घूम जाती है अचानक, उसको हम ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, उसे भी अचानक बहुत तीव्र पेट दर्द होता है।
0: अच्छा, क्या घूम जाती है?
1: ओवेरियन सिस्ट घूम जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसको हम ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट या टॉर्शन ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और महिला वर्ग में कई बार मिस पीरियड हो जाता है तो उसमें क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि वो बच्चा जो है बच्चेदानी नहीं होकर ट्यूब के अंदर होता है, तो वो कई बार फट जाती है
0: जी,
1: रप्चर्ड एक्टोप्रेगनेंसी बोलते हैं। वो बड़ी सीरियस कंडीशन है, उसमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए
0: जी। तो जैसे आपने आपने बताया बच्चा मतलब बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब में, तो फिर इस केस में क्या ऑपरेशन ही होता है या वो बच्चा मतलब वहां पे ग्रो कर सकता है?
1: नहीं नहीं, इसमें तो तुरंत ऑपरेशन
0: ही करना पड़ेगा,
1: नहीं तो जान को खतरा होता
0: है जी जी। तो श्रोताओं, आरोग्यवाणी कार्यक्रम में डॉक्टर बीएल गोचर हमारे स्टूडियो में हैं और पेट दर्द के विभिन्न कारण और उसके उपचार विषय पर हम आज उनसे बात कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें फोन करें, हमारे फोन नंबर वही आपके जाने पहचाने 29411 42 और कोटा का एसटीडी कोड 0744। तो डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार से हमें पेट के अंग बताए, मतलब पेट के बारे में पूरी तरह से बताया और कहां कहां क्या क्या समस्या हो सकती है इस बारे में भी आपने बताया। क्या लक्षण, मतलब जैसे क्या लक्षण हम देख सकते हैं पेट दर्द के? जैसे लक्षण, हाँ, जैसे आपने ऊपर लक्षण में परफोरेशन का नाम लिया आपने, अपेंडिक्स का नाम लिया, तो हम कैसे जाने कि भाई जैसे परफोरेशन हो गया है, या ये डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हमें पता चलेगा?
1: परफोरेशन में क्या है कि बहुत तीव्र दर्द होता है जो कि पानी पीने से, आराम करने से, आम दवाई लेने से आराम नहीं होता है
0: जी।
1: और पेट में आफरा आ जाता है और पेट बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिसको हम बोर्ड लाइक रिजिट करते हैं
0: जी,
1: बोर्ड की तरह बन जाता है पेट, तो हाथ लगाने में कड़क कड़क लगता है, ऐसे पता लगता है
0: जी,
1: या रिजिडिटी भी होती है एब्डोमेन
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन? नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, को भी नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम, नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: मैं तेज मोहन बोल रही हूँ। और मैंने पहली बार आज जाना है कि पेट में इतनी तरह के दर्द भी होते हैं।
0: जी जी जी,
1: थैंक यू।
2: तो मुझे सर ये पूछना है कि जैसे मेरी बेटी है, उसको पेट में नीचे की तरफ दर्द होता है,
1: नाभि के नीचे।
2: हाँ जी।
1: हाँ।
2: और वो इतना तेज होता है कि वो पूरी फोल्ड हो जाती है।
1: आपकी बेटी की उम्र कितनी है?
2: सर 21 साल है।
1: 21 साल है।
2: हाँ जी।
1: तो उसमें दो तीन कारण है, एक तो महावारी
2: जी सर,
1: आने के बाद जो दर्द होता है उसको हम डिस्पनोरिया बोलते हैं
2: जी।
1: और ये दो तीन दिन रहता है, दो तीन के बाद ये स्वतः ही ठीक हो जाता है
2: जी।
1: तो उसके लिए आप महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सोनोग्राफी करवाएं, उसमें अगर कोई खराबी है, ओवरी में कोई सिस्ट है, या यूटरस में कोई गिठान उठान है, कोई इन्फेक्शन है, पता लग जाए आप
2: जी सर। थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी, तो हम लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे। एक और हमारे कॉलर हैं। हेलो।
1: जी, आप मित्तल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं सर?
0: नहीं, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं।
1: जी भाई जी, ऐसा है कि अभी बात चल रही थी डॉक्टर साहब की, जो उन्होंने नंबर दिया ना जी,
0: वो
1: उनकी वो
0: जी
1: नंबर
0: जी जी
1: मैंने
0: वो
1: नोट
0: एक्चुअली वो
1: डॉक्टर
0: हमारे
1: साहब को।
0: कार्यक्रम का विज्ञापन है, जो अभी
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: 15 मिनट का कार्यक्रम उस विज्ञापन के तहत है, लेकिन कार्यक्रम आकाशवाणी से जा रहा है और पेट दर्द के संबंध में डॉक्टर बीएल गोचर स्टूडियो में है। अगर आपकी पेट दर्द के संबंध में अगर कोई समस्या है तो आप हमें बात करें।
1: देखो, कम ऐसा है भाई साहब, मेरे को कम से कम 1 महीना पर हो गया, मेरा पेट नहीं तो पेट दुखता है ना, कुछ रोटी पानी खाता हूँ घंटे आधे घंटे में, घंटे डेढ़ घंटे में भूख लग जाती है मेरे को। मतलब जैसे तिल की घानी निकलवाते है ना, जैसे तिल की घानी पक जाए तो उसकी खल बन जाती है,
0: जी
1: और मेरे पेट में से हो रहा है कि रोटी पानी खाता हूँ और घंटे डेढ़ घंटे में भूख लग जाती है, और पेट का पाचन सही नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब पेट में दर्द रहता है और पेट सही नहीं हो रहा है, 1 महीना भर हो गया मेरा।
2: अच्छा, आप ही बताएं, आपको जो पाचन ठीक नहीं है तो आप जैसे कुछ खाते हैं तो आपको दस्त की शिकायत होती है क्या?
1: हाँ, दस्त की शिकायत होती है सर,
2: कुछ खाते
1: ब्लीडिंग
2: ही
1: वैसी आती
2: टॉयलेट चले
1: है,
2: जाए तो आप
1: जैसे मैं तो पतली आती है ना, टाइट आती है।
2: नहीं, पर जैसे आप कुछ खाते हैं तो दस्त की शिकायत हो जाती है आपको,
1: हाँ दस्त की शिकायत होती
2: तो
1: है
2: इस
1: सर।
2: बीमारी को हम
1: खाना
2: बोलते
1: खाना
2: हैं
1: खाना
2: इरिटेबल बाउल
1: खाना जल,
2: सिंड्रोम।
1: खाना जल्दी हजम हो जाता
2: हाँ,
1: है।
2: कोई बात नहीं। डायबिटीज तो नहीं है आपको?
1: अच्छा
2: नहीं, डायबिटीज बीमारी, शुगर की बीमारी है क्या आपको?
1: नहीं सर, शुगर की नहीं है सर।
2: जांच करवाई आपने? हाँ,
1: जांच तो कोटा का चल रहा है मेरा कोर्स, वैसे पहले चल रहा था कोटा, राजेश राजेश ये राकेश अपना जिंदल।
2: अच्छा, जिंदल साहब तो हार्ट वाले डॉक्टर साहब हैं।
1: हाँ, हार्ट वाले हैं,
2: हाँ।
1: उनके यहाँ से चल रहा था जी, 4 साल तक तो उनकी दवा खाई, अब मैं गया था अपने अपने एस एन पारिक है ना ये,
2: हाँ।
1: इनके यहाँ गया तो इसलिए मतलब मेरे पाँव लगी थी इसमें सोनोग्राफी और सिटी स्कैन वो करवाई, जो उन्होंने कहा हार्ट फाट भी कुछ नहीं है और टीबी का भी नहीं है, तो उनकी दवा चल रही है मेरी अभी।
2: नहीं, आप
0: आपकी खास समस्या मतलब क्या है? आपकी समस्या है कि आपको खाना खाते ही तुरंत हाँ
2: भूख लग जाती है,
0: बिल्कुल लैट्रिन आती है और आपका पेट जल्दी खाली हो जाता है और पुनः भूख लग जाती है। तो अब डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं उसे आप सुनिए।
2: आपको ये जो समस्या है इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जैसे अपन पेट में कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वहां से करंट चलता है, तो आंतों को कहता है भाई चलो खाली करो, तो इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श ले, वो दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा आपका।
1: ठीक है सर, डॉक्टर साहब उनको दिखाऊं, पारी जी को या किसी को दिखाऊं और को?
0: हाँ, जनरल
2: आपकी जैसी इच्छा हो
0: जी,
2: एक बार सर्जन को दिखा लें, आप गैस्ट्रो सर्जन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लें एक बार।
1: ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।
0: पेट के जो डॉक्टर हो उनको दिखा दीजिए। हम जान सकेंगे आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम बद्री लाल है जी, मैं ग्राम हाफुलाई की डूंगरी से बोल रहा हूँ, बूंदी जिला नैनो तहसील से
0: जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: ये तो आपने यही दिखा ना, आपने कोटा बूंदी चंबल चैनल के नंबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोटा बूंदी चंबल चैनल से बात कर रहे हैं।
1: ठीक है भाई जी साहब, प्रोग्राम का क्या नाम है?
0: आरोग्य वाणी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है भाई जी, धन्यवाद साहब
0: जी। तो डॉक्टर साहब, हम लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहे थे आपकी, क्या क्या लक्षण होते हैं, दर्द होता है अलग अलग हिस्सों में तो उसको अलग अलग तरह से आप डिफाइन करते हैं। कितने प्रकार के पेट दर्द होते हैं उस बारे में?
2: दर्द के जो तरीके होते हैं, एक तो पेट में जलन होती है दर्द में, एक कंटिन्यूस डल लाइक पेन होता है, लगातार बना होता है, एक मरोड़ लगते पेट में, क्रैप लाइक पेन या कोलिकी लाइस्ट होता है।
0: बिल्कुल,
2: कोलिकी पेन में क्या दर्द आता है और चला जाता है।
0: अच्छा,
2: ये यूजुअली पथरी के अंदर दर्द होता है, गॉलब्लैडर स्टोन में या किडनी स्टोन में हो उसमें कोलिक होता है
0: जी। तो जैसे दर्द आता है चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, असल में पेट दर्द को बड़ा सामान्य ले लेते हैं, घर में कुछ इलाज किया करते हैं। कितना दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: एक तो पेट दर्द, मेरा सबको सलाह श्रोताओं को कि पेट दर्द होने के बाद पेट की मालिश नहीं करें।
0: अच्छा,
2: पेट में मालिश करने से, तेल लगा मालिश करने से अंडरलाइन जो ऑर्गन है वो फट जाते हैं
0: जी। हमारे कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस डायल कीजिए, आप वापस नंबर लगाइए जी। हाँ, तो हम बात
2: ये कि पेट दर्द की मालिश, पेट की मालिश नहीं करें तेल से या किसी से पेट की मालिश नहीं करवाएं
0: जी,
2: इससे आंतों में फटने का खतरा होता है
0: जी। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से
0: जी। योगेश जी, प्रश्न पूछिए।

0: हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी गर्मी का दिन है तो पानी जो हम ज्यादा पीना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल ठंडा पानी पिए जैसे ज्यादातर लोग फ्रिज का यूज करते हैं, या फिर कुछ गर्म कुनकुना पानी पिए?
1: नहीं, आप सिंपल वाटर ले सकते हैं, ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पिए आपके।
0: अच्छा,
1: रूम टेम्परेचर का पानी ले लें, आपको दिक्कत नहीं। चिल्ड पानी लेने से जुकाम खांसी होने का डर रहता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और 3 से 4 लीटर पानी रोज में, ज्यादा इससे ज्यादा मात्रा में पानी नहीं लें।
0: जी जी, धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बता रहे थे आप, जैसे मरोड़ भी हो जाती है, कहीं भी दर्द हो जाता है, तो उसमें मालिश भी नहीं करवाएं, और अपने आप स्वयं मतलब कोई सेक कर सकते हैं?
1: नहीं, सेक भी नहीं करना चाहिए।
2: सेक भी नहीं करना चाहिए,
1: ठंडा पानी ले ले, आराम कर ले।
2: जी, तो और पेट दर्द हो गया तो तुरंत राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: तुरंत राहत पाने के लिए अपन पेट दर्द के लिए गोली डाइसाइक्लोमिन की गोली खिला सकते हैं उसको।
2: अच्छा अच्छा,
1: डाइसाइक्लोमिन पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट खिला सकते हैं
2: जी। हेलो
3: हेलो, आकाशवाणी मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, आरोग्यवाणी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: सत्यनारायण मीणा बर्तवावड़ी।
2: जी सत्यनारायण जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना मैडम,
2: हम्म,
3: तो उल्टी सी वो ते मतलब होती नहीं है, लेकिन उचकार आते हैं
2: जी, ऐसा रहता है जी।
3: हाँ
2: जी,
3: सीने में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है।
2: अच्छा
1: अच्छा, उचकारे जो आते हैं तो मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है क्या आपके?
3: मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है डॉक्टर।
1: ये आपको जीआरडी की बीमारी है, इसको एसिडिटी और जीआरडी बीमारी कहते हैं, इसको रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं।
3: जी धन्यवाद डॉक्टर।
1: तो इसके लिए आप जो है ना, एक तो कितनी उम्र है आपकी?
3: उम्र 42।
1: और कितने समय से परेशानी है?
3: परेशानी वो है जो मैंने बताया।
2: कितने समय से है आपको?
1: कितने दिन से परेशानी
3: ये
1: है?
3: एक साल से।
1: हाँ, तो उसके लिए आप एंडोस्कोपी कराएं। एंडोस्कोपी जांच करा लें एक बार, आपकी पेट में कोई खराबी तो नहीं अंदर? ऊपर से तो पता लगता नहीं है।
3: जी सर,
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
2: अक्सर जैसा भी हमारी श्रोता पूछ रहे थे, खट्टी डकार आना या सुबह सुबह हम देखते हैं कई लोगों को जी में चलता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एसिडिटी की वजह से भी होता है कई बार।
1: क्या, जब रात भर का एसिड आमाशय में इकट्ठा रहता है तो बड़ी एसिड की मात्रा पीएच ज्यादा होती है उसकी
2: जी।
1: तो जी मिचलाता उस वक्त अपन कम से कम 2 गिलास ठंडा पानी पी लें, तो सुबह से उठते वो मिचलाएगा नहीं
2: जी।
1: और भूखे पेट कुछ खाए नहीं
2: जी। तो श्रोताओं, हम आप बात कर रहे हैं आज आरोग्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार विषय पर। तो डॉक्टर साहब, पेट दर्द की वजह से कई बार बुखार भी आ जाता है, या फिर बच्चों में पेट दर्द हम देखा करते हैं, वे बता नहीं सकते कि हमारे पेट में दर्द है, कई बार रोया करते हैं। अगर हम नवजात शिशुओं की बात करें तो उनके रोने से क्या जान कर लें कि पेट दर्द है, या फिर अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं जो बता सकते हैं तो उनके पेट दर्द के लिए हम क्या करें?
1: जो बड़े बच्चे हैं, 1 साल से ऊपर बच्चा है, उनके तो पेट दर्द के लिए कई बार क्या होता है कि लिंग में सूजन आती है, लिंग के मुंह पे, उसको हम बेलोनोपोस्टाइटिस कहते हैं, वहाँ सूजन आती है, पेशाब करने में बच्चे को तकलीफ होती है, उससे दर्द होता है। कई बार छोटा मोटा स्टोन आके अटक जाता है बच्चों में, उसकी वजह से पेट दर्द होता है बच्चों में
2: जी।
1: और कई बार बच्चों में कब्जी होती है, उनके हार्ट स्टूल आता है, वो बता तो पाते नहीं, उसकी वजह से पेट दर्द होता है।
2: तो क्या ये दर्द से बुखार भी आ जाता है? पेट दर्द से
1: बुखार आता है
2: जी। कॉलर है हमारे, हम उन लेते हैं। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्ते
2: नमस्ते,
4: मैं कोटा से बोल रही हूँ।
2: कोटा से कौन मैडम बोल रही हैं?
4: राजेश्वरी।
2: राजेश्वरी जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
4: जी वो है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं है, बाकी मेरी बहू है ना, उसके अल्सर की शिकायत रहती है मतलब। तो उसको दिखाया भी, तो प्राइवेट भी दिखाया है और सरकारी में भी दिखा रखा है, जांचें वगैरह सब करवा रखी, फिर भी पेट दर्द रहता है उसका हमेशा ही।
1: अच्छा मैडम, बताओ उनकी एंडोस्कोपी करा रखी है क्या आपने? एंडोस्कोपी जांच करा रखी है क्या?
4: जी वो भी करवा रखी है।
1: तो उसकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिखा के उनसे नियमित रूप से दवा लें, ठीक हो जाएगा?
4: हाँ लिया ना एक महीने।
1: और खाने में परहेज रखे, उनको मिर्च मसाले नमकीन कचौरी पकौड़ी वैसे चीजें नहीं खिलाए?
4: हाँ वो मैदे की चीजें ज्यादा खाती है बस।
1: वो तो बंद करनी पड़ेगी,
2: मैदे की चीजें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, वो तो पेट दर्द का मुख्य कारण भी है। फिर आप बता रहे अल्सर है।
4: हाँ हाँ,
1: इसकी दवा नियमित रूप से लें आप।

0: एक साल तक दवाई दिलाएं उनको अल्सर से, नहीं तो कई बार अल्सर बस्ट हो जाता है, फूट जाता है, फिर इमरजेंसी दवा भी आती है।
1: इस वजह से मैंने पूछा, मैंने कहा
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आप लोगों के लिए ही हम ये कार्यक्रम किया करते हैं जो आपकी। जी बिल्कुल,
1: सुनती हूँ ना, मैं तो हमेशा पूरे सुनती हूँ कार्यक्रम तो।
2: अच्छा कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम तो एक नंबर, पूरा पूरा दिन ही लेके रहती हूँ मैं यहाँ पे बेड पे, कुछ काम करने जाती हूँ वहाँ भी है ना।

0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम तो एक नंबर, पूरा पूरा दिन ही लेके रहती हूँ मैं यहाँ पे बेड पे, कुछ काम करने जाती हूँ वहाँ भी है ना, फोन चला के और सुनती रहती हूँ, पूरे कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमको पता चला और आज आपने फोन किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ। दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी।
3: दाने में गिठान हो या बच्चेदानी में गिठान हो, फाइब्रॉइड यूटरस हो या ओवेरियन सिस्ट हो, उसकी वजह से हो जाता है।
0: एक कॉलर है सर। हेलो हेलो।
4: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, जोर से बोलिए थोड़ा।
4: हाँ, चीतरलाल मरबिट बोल रहा हूँ, ग्राम पाल्या जिला बाना से।
0: हाँ चीतरलाल जी, प्रश्न पूछिए।
4: हाँ, मेरा पेट दर्द तो नहीं करता है पर भूख बहुत लगती,
0: भूख लगती है।
3: एक तो भूख तो अपन जब कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं तो ज्यादा काम करते तब भूख लगती है।
4: नहीं, भौतिक कार्य भी करते हैं और योग प्राणायाम भी करते हैं, वो भी ऐसे भी करते हैं।
3: तो आप भूख के लिए एक बार डायबिटीज के ब्लड शुगर चेक करा लें, ब्लड खून की शुगर की जांच और पेशाबी शुगर की जांच करा लें एक बार आप। मधुमेह बीमारी में भूख बहुत लगती है।
0: मतलब आपका पेट दर्द नहीं करता है, सिर्फ भूख लगती है आपको?
4: भूख नहीं लगती है।
0: भूख नहीं लगती है?
4: भूख बहुत कम लगती है।
0: भूख कम लगती है डॉक्टर साहब?
3: भूख जो कम लगती है वो कई बार लीवर की बीमारियों में भी कम लगती है। तो पेट की जांच कराएं, पेट की सोनोग्राफी करा लें, खून की जांच करा लें, इसे कारण पता लग जाए कारण क्यों भूख क्यों नहीं लगती आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम महिलाओं में पेट दर्द के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कुछ कारण बताया, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रही हूँ कि महिलाओं में क्या हर्निया होता है?
3: हर्निया होता है महिलाओं में।
0: अच्छा, तो जो नाभि फूल जाती है या पेट से संबंधित कुछ हर्निया? हाँ,
3: उसको नाभि वाले हर्निया को अपन बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया।
0: जी,
3: जो डिलीवरी के बाद पेट में जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से वहां से वीक होके आम बाहर निकल जाती है, वो अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है।
0: जी, तो मतलब वो क्या कुछ ज्यादा हानिकारक होता है या कैसे जानकारी प्राप्त करें और कैसे इसका इलाज?
3: प्रजनन चक्र पूरा कर ले तो उसका अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन करवाना चाहिए महिला को।
0: जी,
3: अब जैसे हर्निया हो गया मान लो, उसके बाद एक बच्चा और करना है तो बच्चा करने के बाद ऑपरेशन करवा ले, क्योंकि अगर अपन हर्निया को ऑपरेट भी कर देंगे वो प्रेगनेंसी हो गई उसको कंसीव कर लिया उसे, तो दोबारा उसका ऑपरेशन को रिकरेंस होने की संभावना रहती है।
0: जी, तो मतलब क्या ये हर महिला को होता है जैसे आप बता रहे हैं प्रेगनेंसी दौरान? तो
3: किसी किसी को होता है।
0: जी, अब हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या क्या जांचें हैं पेट दर्द अगर हो गया तो कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए?
3: पेट दर्द होने के बाद एक तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
0: ये हम अपना प्रश्न पूछेंगे कि हमारे कॉलर हैं। हेलो
5: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
5: जितेंद्र बात कर रहा हूँ।
0: जितेंद्र जी, आप अपने पास जो रेडियो है उसको बंद कर दें और इस पे फोन पे बात करें।
5: जी मैम।
0: हाँ, अब बात करें।
5: डॉक्टर साहब ने भी बोला था मैम।
0: जी,
5: दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए।
0: जी,
5: ज्यादा पानी पीने से भी पेट में समस्या होती है क्या?
3: नहीं नहीं होती, आप जितना पानी पियेंगे पेशाब रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, ऐसे कोई हानि नहीं होती है इस पानी पीने से। पर जो हार्ट के बीमार हो या किडनी की बीमारी उनको पानी कम पीना चाहिए।
5: और सर, हमारा पेट भी दर्द रहता है हल्का हल्का, ज्यादा तो नहीं पर हल्का रहता है।
0: पेट दर्द रहता है?
5: हाँ,
0: हमेशा रहता है।
5: सुबह के टाइम पे रहता है।
0: अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो क्या खाना खाने से पहले तक रहता है, खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है या कब तक रहता है?
5: एक खाना खाने से पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है।
0: अच्छा,
3: एक तो आप खाने में मिर्ची और बेसन चीनी ऐड
5: करना रहता है जितना मैं सह लेता हूँ।
0: इतना रहता है कि जितना आप सह लेते हैं? लेकिन अगर हमेशा रहता है तो ये तो एक समस्या है ना, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
5: दिखा लिया मैंने, सोनोग्राफी भी करवा ली, फोन की जांच भी करवा ली।
0: क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला?
5: नॉर्मल
3: खाने में आप परहेज करें, मिर्च वैसे ही नहीं लें और चाय बंद कर दो आप एक तो बिल्कुल। जर्दा वर्दा खाते, जर्दा गुटखा बंद करता
5: हूँ। नहीं नहीं नहीं खाते हैं सर, चाय भी सुबह एक बार पीते हैं और

0: दिन में पीते एक बार बस।
1: और आप चाय के जगह दूध ले लें, दही छाछ ले लें।
0: खाना बीस रुपए सुबह
1: बिना मिर्च की सब्जी खाएं आप, मिर्च मसाला कम खाएं।
0: हाँ जी,
1: मिर्च मसाले कम खाएं आप।
2: मिर्च मसाले कम खाएं, जैसा डॉक्टर ने बताया है वैसा करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम जांचों के बारे में जानकारी ले रहे थे कि क्या क्या जांचें करवानी चाहिए पेट दर्द में।
1: पेट दर्द के बाद जांचों में ये पहले तो मरीज का चिकित्सक के द्वारा व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है, उसमें लेटा के उस मरीज को देखते हैं, पेट में हाथ लगा के देखते हैं कि शरीर के किस हिस्से में दर्द है पेट।
2: बिल्कुल,
1: लोकलाइज पेन किस जगह, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, बीच में, वहाँ अपन हम देखते हैं और वहाँ हाथ लगाने के बाद उस पर पता लगता है कि इसको दर्द है तो उससे रिलेटेड जांच करानी चाहिए। और इस दौरान मरीज की नाड़ी देखनी चाहिए, नाड़ी कितनी चल रही है। कई बार पेट दर्द नाड़ी की रफ्तार बहुत हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। फिर जांच जो कराते हैं उसमें जैसे सीवियर पेट दर्द होता है उसमें क्या, लीवर में एक डलनेस बनाई भगवान ने, वो परफोरेशन वगैरह में लीवर डलनेस ऑब्लेटेड खत्म हो जाती है।
2: अच्छा, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ मैडम, मैं स्वच्छ इंदौर से बोल रहा हूँ, महेश शर्मा।
2: महेश जी, प्रश्न पूछिए।
3: हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पेट में क्या है, दुखता वगैरह तो नहीं है पर कब्जी बहुत रहती है।
2: कब्जी रहती है।
1: कब्जी के लिए एक तो आप खान पान में थोड़ा बदलाव करें।
3: सर वो मेरा एक क्या कम खाना खाने से भी रहता है क्या ऐसा?
1: कम खाने से कब्जी आप खाएंगे नहीं तो फिर वेस्ट कैसे बनेगा?
3: हाँ, वो मेरी बच्ची यही कहती है बार बार, बोले पापा आप खाना तो खाते ही नहीं हो, दो रोटी दिन।
1: फाइबर डाइट लो आप, खूब सलाद खूब लो, ककड़ी टमाटर सलाद खूब खाओ आप।
3: अरे सलाद और फल फ्रूट तो इतना खाता हूँ कि पूछो मत।
1: और पानी भी प्रचुर मात्रा में ले आप।
3: पानी भी पीता हूँ पर ये पता नहीं क्या, फिर वो मेरे मतलब दो चार दिन ऐसा रहेगा, और हालांकि रोज नहीं होता है।
1: कब्जी रहती है तो इसे बोल ले सकते हैं आप, दो चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद।
3: अच्छा अच्छा,
1: इसे बोल से आपकी कब्जी दूर हो जाएगी।
3: तो वो गरम पानी से ले लूं कि?
1: आप तो सिंपल पानी से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गरम ठंडे अच्छा। पानी से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता।
3: वैसे वो त्रिफला वटी लेता हूँ।
1: अच्छा, उसमें भी इसे बोल होता है, त्रिफला वटी में भी ले सकते हैं।
3: ठीक ठीक,
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, जांचों के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, और कौन कौन सी जांचें होती है?
1: जांचों में एक तो हम खून की जांच करवाते हैं, सीबीसी कराते हैं
2: जी।
1: उस सीबीसी कराने के लिए देखते हैं कि उसको खून की कमी तो नहीं है या फिर ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं,
2: वो मतलब वो भी पेट दर्द का कारण होता है।
1: हाँ,
2: इन्फेक्शन हमारे। हेलो
4: हेलो, नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं नाथूलाल कुमार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू से बोल रहा हूँ।
2: जी नाथूलाल जी, प्रश्न पूछिए।
4: प्रश्न मेरा यह है कि भागने से, दौड़ने से या तेज चलने से पेट में दर्द होता है तो उसको तुरंत कैसे ठीक करें?
2: अच्छा,
1: तुरंत ठीक करने के लिए आप कुछ समय के लिए रुक जाएं, आराम करें, विश्राम करें, आराम आ जाएगा।
4: या कोई दवा गोली भी होती है क्या?
1: फिर आराम करने तो मिट जाता होगा दर्द आपका।
4: अच्छा,
2: आराम करने से क्या दर्द मिट जाता है, या भागते ही रहते हैं आप, भागने के बाद बैठते होंगे तो दर्द ठीक हो जाता है अपने आप?
4: धीरे धीरे वो कम जरूर हो जाता है।
1: तो थोड़ा जल ले लें, पानी ले लें, पी लें
2: हमेशा, मतलब भागना क्या आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं उसकी बात कर रही हैं आप?
4: ठीक है सर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब।
1: उसमें खून की जांच कराते हैं, सीबीसी देखते हैं, फिर देखते हैं मरीज को कहीं डायबिटीज तो नहीं है तो उसके लिए ब्लड शुगर की जांच कराते हैं
2: जी।
1: और किडनी समस्या परेशान करने के लिए क्रिएटिनिन जांच कराते हैं, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, लीवर में कोई परेशान तो नहीं है, उसको पीलिया तो नहीं है
2: जी। तो ये सब कारण, मतलब ये सब जांच करवाते हैं अगर पेट दर्द है तब।
1: हाँ
2: जी,
1: आश्चर्य एंटीजन टेस्ट कराते हैं, कई बार लीवर में इन्फेक्शन तो नहीं है
2: जी। हेलो
5: नमस्कार
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: भूपेंद्र बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज।
5: भूपेंद्र कुमार गुप्ता, विज्ञान नगर से।
2: विज्ञान नगर से भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर बोलिए, जोर से बोलिए।
5: भूपेंद्र कुमार गुप्ता।
2: हाँ, नाम तो सुन लिया आप, अब थोड़ा जोर से बोल के प्रश्न पूछिए।
5: प्रश्न ये है, ये गोला जाना क्या होता है साहब?
2: अच्छा,
5: लोग सुनते हैं ये ये दर्द की अक्सर शिकायत में लोग कहते हैं गोला जाता है।

0: कहना क्या आता है, यूजली आंतों में जब रुकावट होती है ना
1: जी,
2: और नुकसान हो जाता है उसे
0: पुराने। सुनो तो सही,
1: आप सुनिए डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं,
2: इसका समाधान करिए।
0: हाँ हाँ, गोला जाना क्या होता है, जब आंतों में रुकावट होती है, आंतों में स्ट्रिक्चर रहता है या आंतों की टीबी हो जाती है, तो जो आंतों में गैस इकट्ठी होती है ना उसकी वजह से दर्द होता है। तो गोला जाना ऐसे कोई बीमारी नहीं है, परंतु वो जो आंतों में गैस घूमती है उसको गोला, सामान्य आदमी उसको गोला समझता है, मेरा गोला बन गया।
2: ये लोग बाग सुतवा लेते हैं उससे, वो परेशानी
0: नहीं, पेट को सुतवाना नहीं चाहिए सब, डॉक्टर को दिखा के जांच करवाना चाहिए
1: जी।
0: यूजुअली इसमें आंतों की टीबी या आंतों का स्ट्रक्चर या आंतों में चिपका चिपकी निकलती है, एडजेंस निकलते हैं आंतों के।
2: इस भ्रांति के लिए फोन किया था
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपके जरिए लोगों तक भी जानकारी पहुंची। नहीं तो अक्सर देखते हैं पेट में गोला है तो सुतवा लिया जाता है, तो कई बार हम देखते हैं वो जो गोला है वो नाभि में भी होता है, कई बार ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे हो जाता है नाभि से, तो ये क्या है, मतलब गैस का ही गोला होता है वो, और कई बार सुतवाने के बाद बीच में नाभि में वो गोला नजर आता है,
0: वो आंतों की गैस है
1: महसूस किया जाता
0: है, जो गोला बनता है वो आंतों की गैस बनती है, आंतों में रुकावट होती है तो गैस घूमती रहती है।
1: लेकिन जब अगर वो नाभि के नजदीक होता है या नाभि पर होता है तो फिर पेट दर्द ठीक हो जाता है, ऐसी क्या मान्यता है, ऐसा क्या है मतलब डॉक्टर साहब?
0: अब गोला संबंधित हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो गोला फॉर्मेशन है वो यूजुअली आंतों की टीबी में बनता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसको उसकी जांच करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: सही डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छी जानकारी है हमारे श्रोताओं तक डॉक्टर बी एल गोचर साहब पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं आंतों की टीबी वगैरह, तो क्या पेट का कैंसर भी होता है या क्या लक्षण होते हैं?
0: पेट का कैंसर भी होता है, लक्षण सामान्य से जैसे मान लो पेट दर्द होता है, नाभि के ऊपर होता है
1: जी,
0: और उसके साथ साथ उसके उल्टी में खून आता है।
1: अच्छा,
0: या टट्टी दस्त उसके काले आते हैं या दर्द मिटता नहीं है, तो सामान्य जो जांच है यूजुअली सोनोग्राफी करा कर देखते हैं, उससे अगर जांच पता नहीं लगता तो उसका एंडोस्कोपी करवाते हैं। तो ऐसे ही।
1: हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: प्रीति बोलिंग कोटा से। नमस्ते,
1: थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज।
3: प्रीति बोलिंग कोटा से।
1: प्रीति जी प्रश्न पूछिए।
3: मेरा प्रश्न है कि कभी खाना खाने के बाद जैसे पेट में गैस बन जाती है, तो पेट में दर्द करता है, क्या अपन करना?
1: खाना खाने के बाद गैस बन जाती है और फिर पेट दर्द होता है।
3: हाँ, जैसे गैस लगता है, गैस कवर कर रही है, पक रही है, तो दर्द होने लगता है।
1: तो क्या ये आपका रोज होता है?
3: नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है,
1: कभी कभार हो जाता
0: है। कभी आपको होता हो तो उसके लिए गैस का कैप्सूल ले लें, पेंटाप्रोजोल, डोमप्रेडोन या रेप्रोजोल कैप्सूल ले लें, उससे आराम आ जाएगा आपको।
1: कुछ घरेलू उपाय?
0: घरेलू उपाय ये कि अगर पानी ले लें खाना खाने के बाद,
1: खाना खाने के बाद पानी ले लें। आपकी आवाज कट रही है मैम।
3: पानी तो पीते ही बट तुरंत नहीं होता खाना, से दो घंटे बाद।
0: एक खान पान में मिर्च मसाला अवॉइड करें, ज्यादा तली हुई चीजें अवॉइड करें, और फिर भी आराम नहीं आए तो चिकित्सक को दिखा लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपने बताया उल्टी होती है उससे, और या फिर मतलब काली अगर पॉटी आती है तो वो भी उसका लक्षण माना जाता है।
0: जो कैंसर है रेक्टम का, मल द्वार का जो कैंसर है, उसमें यूजुअली क्या होता है कि बार बार दस्त आती है
1: जी।
0: अगर ये समस्या 15 दिन से ज्यादा रहती है तो उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर परीक्षण करते हैं, एक तो दस्त के रास्ते पीआर एग्जामिनेशन करते हैं, उससे कोई गिठान हो, अल्सर हो, छाला हो तो पता लग जाता है।
1: तो किस तरह से उपचार किए जाते हैं डॉक्टर साहब? जैसे पेट में सूजन है, अकड़न है, या जो आप बता रहे हैं कि खून में मतलब उल्टी में खून आता है, तो किस तरह से आप लोग उपचार किया करते हैं या क्या सावधानियां?
0: अगर उल्टी में खून आता है तो उसके लिए पहले तो अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, दूरबीन से जांच करते हैं ऊपर से, उससे पता लग जाता है कि पेट में अल्सर है या कोई सूजन है या कोई इसोफेगाइरिसिस है, उसके कई बार शराब की हिस्ट्री होती है तो उसमें लीवर खराब हो जाता है, क्रॉनिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाता है
1: जी,
0: फिर उससे वेरिसेस वेल बन जाती है, उससे वो फट जाती है, उनसे खून निकलता है, और उसके साथ साथ दूसरे लक्षण भी होते हैं, पेट में आफरा आ गया, पेट में पानी भर गया, पेट में फुला हो गया।
1: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब आप बात बता रहे हैं, अब आप ये प्लीज बताइए कि जैसे क्या

0: सावधानियां रखें, पेट दर्द ना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पास आई है, किसी का खाना खाने के बाद पेट दर्द हुआ है, किसी का कब्जी की वजह से हुआ है।
1: एक तो आदमी भोजन में ज्यादा मिर्च मसाला नहीं ले और फ्राइड फूड नहीं ले, फास्ट फूड नहीं ले,
0: अच्छा
1: नियमित रखें, और खाना खाने के बाद पानी प्रचुर मात्रा में ले। कई बार अपन खा लेते हैं पानी नहीं पी पाते हैं, जैसे आजकल क्या है, जैसे बाजरे की ज्वार खाएगा आदमी, बाजरे की रोटी खाएगा, चने की दाल खाएगा, तो ये जो फूड है ये बहुत पानी मांगते हैं पीने के बाद।
0: अच्छा,
1: जैसे बाटियां खाते हैं अपने हाड़ होते हैं, बाटियां बहुत प्रचलित है, बाटियां खाने के बाद रात को पानी नहीं पीता, उन लोगों के पेट दर्द हो जाता है, सुबह 10 लग जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब जिस तरह का अगर भारी खाना खाया है तो पानी भी हमें पूरा उसे
1: बचाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी।
0: बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे। हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: धीरेन्द्र गबारी, गांव बेर, तहसील जिला पाठक, गुजरात से बात कर रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब को और आप।
0: नमस्कार नमस्कार, थोड़ा सा जोर से बोल के प्रश्न पूछिए।
2: मेरा प्रश्न है कि अगर पेट का मोटापा यानी भारीपन रहता है तो उसके कौन से तरीके हैं जो उसको हम इसका हल कर सके, डॉक्टर साहब से मेरा ये प्रश्न है।
1: पेट में मोटापा भारीपन रहने के मुख्य कारण ये है, एक तो पेट में ज्यादा गैस बनी हो या चर्बी जमी हो, या फिर कई बार पेट में पानी भरा होता है उससे भी मोटापा रहता है, तो उसके लिए आप चिकित्सक को दिखाएं और निदान करवाएं।
2: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सावधानियां हम खाने की बात कर रहे थे, अगर भारी खाना खाया है तो निश्चित रूप से पानी पीना चाहिए पूरा। डॉक्टर साहब, एक बात होती है कि जैसे हमें खाना खाने के 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में ये है कि अपन जो खाना पचाने के लिए एसिड की आवश्यकता होती है पेट में, वो एसिड भगवान ने बनाया हुआ है, तो वो डाइल्यूट नहीं हो इससे पानी नहीं पीना
0: है। तो क्या सही है 1.5 घंटे के बाद ही पीना चाहिए? चलिए डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर और है। हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार नमस्कार, आप रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ,
2: मेरा नमस्कार। हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम ये है, जैसे खांसते है ना तो नाभि के आसपास ये हल्की सी गठान सी उठती है।
0: अच्छा,
1: तो ये जो खांसते हैं, गठान उठती है, ये आपको हड्डिया की शिकायत है, अम्लैकल हड्डिया, पैरा अम्लैकल हड्डिया है।
2: अच्छा,
1: तो खांसी हमेशा रहती है, कभी कभी होती है खांसी आपको?
2: नहीं नहीं, कभी कभी जैसे किया मैंने, जैसे पेट पर हाथ रखा था ना, खांसी फूला हुआ महसूस किया।
1: जैसे आप खांसते फूल जाता हो, लेटते तो गायब होता होगा?
2: हाँ, दर्द वर्द तो नहीं होता था उसमें।
1: हाँ, जब लेटते तो फूला हुआ इस तरह बैठ जाता होगा।
2: हाँ, खांसते जब भी फूलता है बाकी नॉर्मल रहता है।
1: आपको अम्लैकल हड्डिया की शिकायत है।
2: अच्छा अच्छा,
1: इसके लिए आप सर्जन को दिखाएं और आवश्यकता हो तो ऑपरेशन करवा लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि अच्छा, एक कीजिए दूध से एलर्जी, कई बार होता है।
1: हाँ, लैक्टिक एलर्जी होती है।
0: तो क्या ये सही है, तो दूध छोड़ देना चाहिए?
1: हाँ, उसको फिर सिंथेटिक मिल्क देना उसको।
0: जी, तो किस तरह से पता करें कि हमें दूध से ही एलर्जी है, क्या लक्षण होते हैं उसके?
1: वो पेट दर्द, जैसे दूध पिया उन्होंने, पीने के बाद फिर क्या थोड़ी देर दर्द शुरू होता है?
0: जी,
1: वो ये बार बार होता रहता था, पता रहता है, इससे ही पर्टिकुलर एलर्जी।
0: तो इस केस में क्या सिर्फ दूध छोड़ना चाहिए या दूध से बने सारे पदार्थ, जैसे छाछ है या पनीर है या?
1: नहीं, दूध से बने पदार्थ तो ले सकते हैं, दही छाछ तो ले सकते हैं
0: जी।
1: हाँ, वो पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड एलर्जी, लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है।
0: जी, तो और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इस बारे में आप कृपया विस्तार से हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाएं।
1: एक तो जब भी पेट दर्द हो कभी, आप तो पेट की मालिश नहीं कराएं, एक बहुत बड़ी सावधानी है, इससे कई सारे विभिन्न खतरे टल जाते हैं।
0: जी, तो पेट की मालिश नहीं करवानी हमें। एक हमारे कॉलर और है। हेलो, पेट में सूजन या अकड़न, क्या लक्षण होते हैं? सूजन आ गई, कैसे पता चलेगा? एक आम
1: नहीं, पेट में जैसे टाइट टाइट है, अकड़ है, तो उसी समय हाथ लगा, डॉक्टर जो है हाथ लगा परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि हाथ लगाने में दर्द हो रहा है वहां पे, तो जो उस जिस तरीके से में दर्द है वहां पे उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं, जांच करवाते हैं। सोनोग्राफी से कई बीमारियों पता लग जाता है और फिर अपन उसका पेट का एक्सरे कराते हैं, एक्सरे केवी और एक्सरे चेस्ट कराते हैं, जिससे भी कोई गंभीर बीमारियां उनका पता लग जाता है।
0: जी,
1: और इनसे आराम नहीं मिलता है तो फिर सीटी स्कैन एब्डोमेन करवाते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन एब्डोमेन करवाते हैं।
0: जी, महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय पेट दर्द एक आम समस्या मानी जाती है, तो क्या इस केस

0: कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए या ठीक है प्रेगनेंसी है इस वजह से पेट दर्द है नेगलेक्ट कर देना चाहिए?
1: नहीं, सावधानी तो रखना चाहिए, सब पानी प्रचुर मात्रा में लें, और कभी दर्द हो तो दर्द के लिए दर्द निवारक गोली ले सकती है, जहां तक वहां तक दर्द की गोलियां अवॉइड करें और महिला रोग विशेषज्ञ को दिखाएं।
0: क्या पेट कॉलर है हमारे? हेलो
2: जी, मैडम जी को नमस्कार और हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और हमारे सभी सुनने वाले बहनों एवं भाइयों को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार सर, नमस्कार
0: सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी हम नमस्कार करते हैं। अब आप अपना परिचय भी दे दें हमारे श्रोताओं को।
2: जी, आपका प्यारा सा श्रोता और बहुत पुराना एवं नियमित श्रोता पंडित राम जी गर्ग रीवा मध्य क्षेत्र से बोल रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल राम जी गर्ग सर, आपका स्वागत है और प्रश्न पूछिए आप डॉक्टर साहब से।
2: जी जी, पथरी और दरअसल क्या है कि गैस के दर्द और एक और दर्द मैं पूछना चाह रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ, तो उसके दर्द में क्या अंतर है दीदी, ये जानना चाह रहा हूँ।
1: पथरी का जो दर्द है वो सामान्यतः बहुत तीव्र गति से कॉलिक लाइक पेन होता है, जैसे दर्द उठता है, थोड़ी देर में आराम आता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है।
2: जी जी जी।
1: तो पथरी जो अपने शरीर में एक तो मुख्य गॉल बटर बनती है, उसको गॉल बटर स्टोन कहते हैं, फिर गुर्दे में बनती है, पेशाब की नली बनती है, पेशाब की थैली बनती है, और कई बार छोटी पथरी आके मूत्र मार्ग में अटक जाती है।
2: जी जी जी।
1: ठीक है सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी जी, ये बीच बीच दर्द होता रहता है तो इसमें समझ में नहीं आता दीदी कि कौन सा दर्द है, काहे का दर्द।
1: नहीं, आप एक काम करें, एक तो चिकित्सक को दिखाएं और फिर अपनी जांच सोनोग्राफी कराएं, उससे पता लग जाए पथरी कहाँ पर है शरीर की, कौन से ऐसी पथरी है आपकी।
2: ये अपेंडिक्स बीमारी कौन सी बीमारी होती है सर जी, या
1: कौन सी
2: जाने की इसका दर्द है?
0: अपेंडिक्स।
2: जी जी जी जी,
1: अपेंडिक्स जो पेट में नाभि के दाहिने साइड में होता है।
2: जी जी।
1: और अपेंडिक्स का दर्द जो होता है वो यूजुअली बहुत तेज होता है।
2: अच्छा अच्छा।
1: और इसके साथ साथ बुखार भी आता है, उल्टी हो सकती है, और दर्द कई बार नीचे भी जाता है, पीछे भी जाता है दर्द।
2: जी जी जी जी जी।
1: और अपेंडिक्स हो तो उसकी जांच करवा के डॉक्टर दिखा के परामर्श लेना चाहिए।
2: जी, गए
1: और बार बार होता है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए इसका।
2: तो मैं सर जी जानना चाह रहा हूँ कि इसके माने लक्षण क्या होते, कैसे जाने कि ये पथरी का दर्द है, गैस का दर्द है कि अपेंडिक्स का दर्द है?
1: वो डॉक्टर ही परीक्षण करके बता सकेंगे, आप तो समझ नहीं पाएंगे। इसमें हम सोनोग्राफी कराते हैं, खून पेशाब जांच करते हैं, मरीज का परीक्षण करते हैं, उससे फिर वहाँ पे हाथ लगाने में दर्द होता है।
2: जी जी।
1: एक्यूट अपेंडिसाइटिस में।
2: जी जी।
1: और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस दर्द नहीं होता है, फिर नाभि के ऊपर गैस बनती है, खिंचाव होता है वहाँ पे।
2: जी जी जी। और ये गैस बनने से कभी कभी पूरे शरीर में भी हल्का फुल्का दर्द हो जाता है?
1: हो सकता है गैस को, तो
0: गैस से भी हो सकता है। जी,
1: पानी खूब मात्रा में लें आप, गैस का बनना कम हो जाएगी।
2: जी जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
2: मैडम एक चीज और है, थोड़ा ऐप में देखे रहा करिए, ये सुबह नमस्कार कोटा जो आ रहा था,
0: हाँ,
2: वो ऐप में नहीं चल रहा था, और हम लोग यहाँ रीवा मध्य प्रदेश से सुनने से वंचित रह जाते हैं।
0: अच्छा, ये क्या ये समस्या रोज आ रही है?
2: नहीं, रोज तो नहीं आ रही, आज 7:20 में मैं उसको ओके किया, इसके पहले तो मैं दूसरे जगह थोड़ा सा ट्यून किए हुआ था, सुन रहा था, पर 7:20 में मैं ओके किया तो 7:30 तक आपका प्रोग्राम नहीं आया।
0: अच्छा, उसके बाद आ रहा था?
2: हाँ, उसके बाद तो फिर आने लगा था, पर उसने भेजे नमस्कार कोटा 10 मैं सुनना चाह रहा था, पर नहीं आया, वो नहीं सुन पाया, उससे वंचित हो गया मैं।
0: अच्छा अच्छा, कोई हो सकता है कोई कारण रहा होगा।
2: जी, तो उसको थोड़ा सा देख रेख केयर करवाए रहा करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, थैंक यू।
2: अब इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्यक्रम आ रहे हैं, बताइए डॉक्टर साहब के, अब फिर आपके कोटा भर में सुना जाए, आपके राजस्थान भर में
0: अभी
2: सुना
0: तो आप सुन रहे हैं ना, डॉक्टर साहब का कार्यक्रम सुन रहे हैं।
2: जी जी हाँ, अब तो आ रहा है, अब तो आ रहा
0: है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने फोन भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। समय कम बचाए, कुछ शब्दों में सावधानियां क्या रखनी चाहिए या पेट दर्द के लिए क्या सावधानियां रखें, क्या ध्यान रखें?
1: एक तो भी गर्मी के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखें, गंदी चीजें नहीं खाएं, बाजार की जितनी बनी चीजें वो अवॉइड करना चाहिए।
0: जी।
1: और पेट दर्द हो तो लिक्विड्स लें, दूध ले लें, छाछ ले लें, दही ले लें, पानी खूब मात्रा में लें।
0: जी, तो इसके लिए कोई व्यायाम तो ऐसा नहीं,
1: नहीं है, पेट दर्द के लिए कोई व्यायाम नहीं,
0: कोई व्यायाम नहीं होता है, बस खान पान का ही हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट दर्द से बहुत सारी समस्या हो सकती है, तो हमें तो ध्यान रखना ये है कि पेट दर्द हो ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर बी एल गुर्जर, आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय

0: काना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोताओं, पेट दर्द के विभिन्न कारण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर बीएल गोचर हमारे स्टूडियो में थे और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन हिमांशु नामा का था, तकनीकी सहयोग निहाल सिंह का था और इसे सूत्रधार के रूप में निशा धूत ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी से हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन कार्यक्रम आरोग्य वाणी FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और वीडियो वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत FIR दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के

0: करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
1: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य है उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया।

0: पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा

0: ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में एआई तकनीक के माध्यम से दो चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की दो सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चंबल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: आकाशवाणी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: सनम रात भर तुमको दिल के तार छेड़कर।
1: अभी आपने शैलेंद्र का लिखा हुआ फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का गीत सुना। शंकर जयकिशन के संगीत में इस गीत को आवाज दी थी तलत महमूद ने। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम भेंट फिल्म लगान से।

फिल्म लगान में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, उदित नारायण और वसुंधरा दास को। इस गीत की नगमा निगार थे जावेद अख्तर, मौसीकार थे एआर रहमान। इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये चंबल चैनल है। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

दिन भर दुनिया के बीच रहकर हम अक्सर खुद से दूर हो जाते हैं। ऑफिस की छोटी छोटी बातें घर आकर तूफान सी बन जाती हैं। कभी किसी की कड़वी आवाज बच्चों की हंसी छीन लेती है, तो कभी बॉस की डांट का गुस्सा अपनों की खामोशी बन जाती है। सोचिए कि जिस घर में कोई आपका इंतजार मुस्कुरा कर कर रहा है, क्या वहां तनाव पहुंचना चाहिए? हमारे सभी श्रोताओं का जवाब ना में होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं हूं आपकी अपनी सखी तेज मोहन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है कार्यस्थल पर गॉसिप से निजी जीवन पर पड़ता प्रभाव। रिश्ते सखियों बहुत नाजुक होते हैं और ये वेतन से नहीं व्यवहार से चलते हैं, इसलिए घर लौटते समय थोड़ा सा गुस्सा जो है वो बाहर छोड़कर आना है, क्योंकि घर को कमाई से पहले शांति और प्यार की जरूरत है। सखियों, कार्यस्थल पर जो गॉसिप है ये जब निजी जीवन में आ जाता है ना, तो उसका असर थोड़ा सा गहरा और भावनात्मक होता है। जो भी व्यक्ति इस गॉसिप का शिकार होता है, आप जिसके बारे में भी बातचीत करती हैं, तो उसके भी आत्मविश्वास में कमी आती है। इसलिए कोई भी श्रोता हो, पुरुष या महिला, सुनने से पहले सोचे, गॉसिप से दूरी बनाए, घर हो या ऑफिस, दोनों जगह सकारात्मक माहौल बनाए। सखियो, क्या आपको मालूम है कि हम जो बाहर सुनते हैं उसी गुस्से को घर में सदस्यों पर उतारते हैं, और सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को लगती है जो मन से हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए खुलकर बात करना सीखें, बच्चों की बातें बहुत ध्यान से सुनें और समझें, और याद रखिएगा कि गॉसिप सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये चक्र है। चक्र किस प्रकार से है कि आपने ऑफिस में सुन लिया और ये मन में इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, और आपने उसका पूरा गुबार घर में आकर निकाल दिया। अब आप इसे रोक भी सकती हैं, तो कैसे? पहला कि ऑफिस में गॉसिप का हिस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, अपने काम पर ध्यान देना है, और घर आने से पहले मन से सारी बातें, अगर आपके मन में कोई गुस्सा है, कोई खटास है, तो वो निकाल कर आना है। घर आकर परिवार वालों के साथ समय बिताना है और खास तौर पर बच्चों के साथ। याद रखिए, ऑफिस आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, और जो परिवार है ये पूरी जिंदगी है। और आप सोचिए कि जो परिवार आपकी पूरी जिंदगी है, उसे तो आप सकारात्मक रखेंगे। और सखियो, यदि आप भी नौकरी करती हैं, तो पहली बात तो कार्यस्थल पर सहकर्मियों से जो व्यक्तिगत बातें हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, निजी जीवन है, उसकी बातें साझा करते समय सीमाएं निर्धारित करें, ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। ये बात थी कार्यस्थल की, लेकिन पास पड़ोस में भी उतनी ही बातें आपको पहुंचानी है जितनी की कोई दूसरा सुनने की ताकत रखे, और आपका उसको कहीं भी गलत इस्तेमाल ना हो। आपको याद है कि सड़क पर एक बोर्ड लगा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, अर्थात आराम से गाड़ी चलाइए, तो बस गॉसिप से भी आपको थोड़ी सी

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: सखियो, आप सुन रहे हैं महिला जगत कार्यक्रम। और जिंदगी में हर कोई सखियो एक सपना लेकर चलता है, लेकिन कई बार रास्ते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आज किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को शिक्षक, किसी को अपने हुनर को पहचान देनी है। आज आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर के लिए सलाह देने के लिए प्रस्तुत है ये भेंट वार्ता। इस प्रेरणादायक बातचीत में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती किरण मित्तल जी। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
6: करियर सिर्फ नौकरी नहीं, आपके सपनों की पहचान होता है। मेहनत जब इरादों से मिलती है, तभी इंसान सच में महान होता है। डिग्री हाथों में होना काफी नहीं है, हुनर होना भी जरूरी है। और जो गिरकर फिर से चलना सीखे, उसी की मंजिल सबसे खूबसूरत होती है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक खूबसूरत साथी बैठी है, किरण मित्तल जी। स्वागत है आपका किरण जी हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्कार।
7: नमस्कार
6: किरण जी, किस कार्य से जुड़ी हुई है, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं।
7: मेरा नाम किरण मित्तल है और मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा काम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट से जुड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर सभी सखियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना स्कोप इसमें बना सकते हैं और इसमें आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और इसमें काफ़ी संभावना है।
6: सखियों, किरण जी आज हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर, इसके लिए हमें जागरूक करने के लिए आई हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न किरण जी आपसे ये है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता क्या है? एक आम महिला के लिए अगर मैं जानना चाहूँ तो ये क्या होता है और इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं?
7: देखो, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर किसी भी इलनेस को लेकर, बीमारी, इंजरीज या अदर हेल्थ केयर कंडीशन को लेकर ट्रीटमेंट और मैनेज किया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट होते हैं, लाइक हॉस्पिटल अच्छे प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं और यहाँ पर सारी तरह के इक्विपमेंट होते हैं, लाइक डायग्नोस की फैसिलिटी यहाँ पे होती है, एक्सरे मशीन्स यहाँ पे होती है। तो हॉस्पिटल एक ऑल ओवर एक अच्छी फैसिलिटी

0: है हमारे लिए, तो इससे हम जुड़ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट वह होता है जहां पर हम स्टाफ, जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है और जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके बीच में हम किस तरह से तालमेल बिठा सकते हैं, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम होता है।
1: जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जैसा कि आपने कहा कि हॉस्पिटल है, तो क्या इसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं इसके क्षेत्र में, या और कोई स्ट्रीम के भी जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं?
0: हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम ऐसा है कि आप इसमें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बायो के स्टूडेंट ही या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इसमें जाएंगे, इसमें
1: जी।
0: अन्य स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। इसमें आप बैचलर और डिग्री के बाद आप मैनेजमेंट कोर्स कीजिए, MBA से मैनेजमेंट कोर्स होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो इसमें आप आगे जाके HR की जॉब कर सकते हैं, आप इसमें PR की जॉब कर सकते हैं, आप इसमें कंसल्टेंट होता है, सोशल वर्क कंसल्टेंट होता है, इसकी जॉब कर सकते हैं, और इसमें काफी अच्छा फ्यूचर है महिलाओं के लिए।
1: कभी कोई ऐसा पल आया है आपके जीवन में जब दिल और दिमाग में संघर्ष हुआ हो?
0: ऐसा पल हॉस्पिटल में रहते हुए कई बार आ जाता है, लेकिन हमें इससे बहुत शांति से धैर्य पूर्वक इसको हमें पार करना होता है, और हमें इसमें सामने वाले को समझना पड़ता है, उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमें दिल से और दिमाग से दोनों से हमें काम करना होता है इसमें, इस स्ट्रीम में।
1: जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जॉब प्रोफाइल कितने क्षेत्र होते हैं उसके?
0: जॉब प्रोफाइल के काफी क्षेत्र है, मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो हॉस्पिटल मैनेजर होता है, हॉस्पिटल इसमें PR की जॉब होती है, PR की जॉब लाइक जैसे आप रोगी से कैसे आप डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं PR की
1: जी
0: जॉब में, और फ्लोर मैनेजर होता है, फ्लोर मैनेजर का काम होता है कि रोगी से कैसे आप डायरेक्ट डायरेक्ट देखते हो, दवाइयों को देखना होता है, क्या सामान आ रहा है जा रहा है, रोगी जो हमारे जो जो हमारे पेशेंट्स है वो कितना सेटिस्फाइड है, तो वो फ्लोर मैनेजर का काम होता है।
1: अच्छा, मतलब
0: हाँ
1: हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो कितने संतुष्ट हैं ये भी आप पता करते हैं
0: हाँ ये
1: इसके
0: भी हम
1: अंदर?
0: पता करते हैं।
1: और इसके अलावा जैसे तीमारदार होते हैं साथ में, तो उनको भी हैंडल करते हैं?
0: हाँ, उनको भी हैंडल किया जाता है, और एक एक होता है, एक स्ट्रीम होती है इसमें HR को लेके, तो HR में क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, बिलिंग्स होती
1: जी।
0: है ना, तो वो सब चीजें HR के द्वारा देखी जाती है, रिक्रूटमेंट हो गए तो
1: अगर
0: सब।
1: कोई सामान लाना है तो वो HR लेके आएगा, उसकी
0: हाँ
1: वो लिस्ट
0: हाँ
1: बनाएगा।
0: हाँ हाँ
1: ठीक है, क्या इस क्षेत्र में नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है
1: जी।
0: तो आप बहुत अच्छी तरह से आप अपनी जॉब को कर पाएंगे, क्योंकि एक अगर अगर आपके पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो आप हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आपके जितने भी आपके नीचे जितना भी स्टाफ आता है, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया
1: जी
0: या फिर आपका क्लिनिकल स्टाफ हो गया, आपका सभी सारे स्टाफ को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है।
1: और वैसे भी इस शब्द मैनेजमेंट, मैनेज करना, व्यवस्थित तरीके से चलाना, और
0: हाँ
1: महिलाएं इसमें पूरी तरह से सक्षम होती हैं कि जब वो घर में इतने अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चला लेती हैं, तो अगर वो किसी क्षेत्र में कदम उठाएं तो भले ही वो हॉस्पिटल से जुड़ा ही क्यों ना हो, हर जगह सफलता तो पाएंगी ही।
0: यस ऑब्वियसली।
1: हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक जो चीज सुनते हैं वो होती है किरण जी, नाइट शिफ्ट, एक लंबे समय तक काम करना, ऐसे में परिवार में और जॉब में, दोनों में, नौकरी में संतुलन कैसे बना सकते हैं?
0: देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, एक मैनेजमेंट के साथ चलता है, तो उसमें क्या होता है, काफी सारे स्टाफ होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उनकी सबकी ड्यूटी अलग अलग टाइम पर बांट दी जाती है,
1: जी।
0: तो जैसे ड्यूटी अगर अगर अलग अलग टाइम पे बन गई है सबकी, तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप ही वो सुचारू रूप से चलता रहता है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि परिवार को आप समय नहीं दे पाई हो, ऐसी कोई शिकायत?
0: नहीं, क्योंकि इसमें काम के जो घंटे होते हैं वो निश्चित होते हैं, तो परिवार को लेके और अपने काम को लेके बहुत बैलेंस बना हुआ होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कभी इस स्ट्रीम में।
1: सखियो, ये बहुत अच्छी बात है किरण जी ने कही कि भले ही नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा पर काम के घंटे वो पूरी तरह से निर्धारित हैं, तो
0: निर्धारित
1: आप अपने परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगी और काम भी कर पाएंगी, तो इसलिए जरूर इस और प्रयास कीजिएगा। इसके लिए स्किल्स आपने बताई हैं कि MBA करनी है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से करनी है, उसके बाद आप HR और PR की पोस्ट के लिए आप हो जाते हैं, लेकिन हमारी ग्रामीण बेटियां जो हैं वो इस

0: क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ सकती हैं?
1: जैसे आपने बैचलर डिग्री ले ली, आपने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया
0: जी,
1: देन उसके बाद आप मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, लाइक आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं, डिप्लोमा के थ्रू भी आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं।
0: डिप्लोमा किस विषय से करना है?
1: डिप्लोमा मैनेजमेंट
0: जी,
1: वो मैनेजमेंट डिप्लोमा आपका 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, और आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो आपका एमबीए भी हो जाएगा 3 साल में, तो उसमें आप एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, देन आप फिर रेडी है मैनेजमेंट के लिए।
0: मैनेजमेंट का जब एक बार हिस्सा बन गए कि हमारी नौकरी लग गई और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब पर आ गए, उसके बाद और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां हम तरक्की के माध्यम से पहुंच सकते हैं?
1: इसमें यह है कि अगर आप अच्छा देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें क्लिनिकल नॉलेज तो हमें चाहिए ही नहीं इसमें, हमें तो हम इसमें यह है कि हम अपना एक अच्छा, अगर क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल में, तो हम यह है कि हम अपग्रेड होते रहेंगे। अभी हम जैसे मान लो एचआर पोस्ट पर है, तो आपको फाइनेंस पोस्ट पर आपको दे दिया जाएगा, तो ये है कि आपने अपना अपग्रेड वर्जन बनाया है,
0: मतलब तरक्की के क्षेत्र तो बहुत सारे,
1: बहुत सारे क्षेत्र हैं। आपकी मेहनत है इसमें, आप हार्ड वर्क कीजिए।
0: हाँ सखियां, हमारी मेहनत ही तो बहुत हैं, और हमारी युवा पीढ़ी की बात करें तो आज हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं,
1: बहुत मेहनत करते हैं।
0: अगर एक महिला की बात करें, वो अपने सपनों में और जिम्मेदारियों दोनों में उलझी जाती है, तो ऐसी महिला को आप क्या कहेंगी?
1: देखो सपनों, जब एक औरत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती है तो वो सपनों को भी पूरा कर सकती है
0: जी।
1: मेरा मानना ये है कि जिम्मेदारी के साथ साथ सपनों को भी पूरा कीजिए। अगर जो महिला, जो सखी अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करती है, तो वह अपने परिवार को भी वो अग्रसर करती है, अपने परिवार को भी वो उन्नति के राह पे ले जाती है। तो हमें आज के टाइम पर सपने को और अपनी जिम्मेदारियों को, दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है।
0: किरण जी, आपके अनुसार एक सफल महिला की असली पहचान क्या है? उसका पद है या वो जो संघर्ष के रास्ते चलकर आई है वो?
1: देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष से ही पद मिलता है
0: जी,
1: बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: कहते हैं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें पद कैसे मिलेगा
0: जी।
1: तो संघर्ष तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इसके बिना तो जीवन अधूरा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हॉस्पिटल को हम दिल माने और जो एचआर होता है, मैनेजर होता है, उसे धड़कन मान ले, तो महिला इसमें क्या खास कर सकती है?
1: देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने माना हॉस्पिटल एक दिल है और मैनेजर धड़कन है, अब इसकी डाइट क्या होगी? इसे हमें अच्छी डाइट देना पड़ेगा दिल को सही रखने के लिए, धड़कन को सही रखने के लिए
0: जी।
1: तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अगर ये हमारा एक हॉस्पिटल है और एक मैनेजर है, तो उसको भी एक अच्छा रखने के लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का तड़का लगाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात है। और महिलाएं जिस जोश से काम करती हैं, तो वो जो शिद्दत उनकी है उससे वो तड़का तो पूरा हो ही जाएगा। किरण जी, वैसे तो महिलाओं को हर क्षेत्र में खुद को साबित करना पड़ता है, आज तक के हमने जो भी समय देखे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उसे अपने आप को साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: देखो मैं यही है कि इस क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए कुछ स्किल्स है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो गई, आपको एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी हो गई
0: जी,
1: आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपका फाइनेंस कैसा है, अगर आप इन सब चीजों पे काम करते हैं, इन सब चीजों को अगर आप आगे रखते हैं इस फील्ड में, तो डेफिनेटली आप हमेशा आगे बढ़ेंगे
0: जी। किरण जी, आप हमारी सखियों को या हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे इस क्षेत्र से भी जुड़ सकें और अपने करियर के अंदर एक सफलता अर्जित कर सकें?
1: मैं सखियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप वर्तमान में यह नहीं है कि आप नीट की तैयारी करें या इंजीनियरिंग की तैयारी करें, आप इस क्षेत्र में आके भी अपने आप को काफी अपग्रेड कर सकती हैं, काफी अच्छा करियर आप इसमें चुन सकती हैं। इसके लिए आपको मैं कहना चाहूंगी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दें, इस पे आप अपना जो प्रबंधन क्षमता है उस पर ध्यान दीजिए, और इसमें काफी अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसमें आप काफी आगे बढ़ सकते हैं।
0: सखियों, जिंदगी की राहें आसान तब लगने लगती हैं जब कोई सही समय पर हमें सही दिशा दिखा देता है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ सपने नहीं, मार्गदर्शन भी जरूरी होता है, और जो इसकी सलाह देते हैं वे टूटते हुए विश्वास को फिर से जिंदा कर देते हैं। आज के कार्यक्रम में अगर किसी एक श्रोता को भी अपने कैरियर की दिशा मिली हो, तो आज किरण जी इस कार्यक्रम में सखियों से जुड़ने का जो मकसद है उनका, वो पूर्ण हो जाएगा और कार्यक्रम पूर्ण सकारात्मकता के साथ सफल भी हो जाएगा। किरण जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके

0: विचारों का हमारे श्रोता अवश्य लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रास्ते मुश्किल हो तो घबराया नहीं करते, सपनों को दिल से कभी भुलाया नहीं करते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जीवन की राहों में जो वक्त से पहले हार माना नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि किरण जी के विचारों से आपको नई सोच और नई प्रेरणा मिलेगी।

सखियो कहते हैं कि जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहां भगवान आशीर्वाद बनकर बरसते हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब बेटी के साथ ही प्रश्न उठते थे कि इसे कैसे पढ़ाएंगे, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे। तो हमारी सरकार ने बेटियों को पंख देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, वो है लाडो प्रोत्साहन योजना। यह योजना बेटियों को सफलता के आसमान तक ले जाना चाहती है और बेटी आज पूरे परिवार की धड़कन होती है।

जहाँ माँ की सहेली होती है वहीं पिता का अभिमान होती है और भाई की ताकत और जान होती है और समाज की एक नई पहचान होती है। और दुख तब होता है सखियो जब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर इन्हीं बेटियों के सपने तोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में लाडो प्रोत्साहन योजना उम्मीद की रोशनी बनती है जो कहती है कि अब बेटियों के सपने अधूरे नहीं रहेंगे। जन्म से लेकर 21 वर्ष तक लगभग 7 किश्तों में इस योजना के द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। अब पात्र कौन है? राजस्थान का निवासी होना चाहिए और सरकारी अस्पताल में बेटी का जन्म होना चाहिए। 7 किश्तों में आपको राशि मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जन्म होते ही, अगर सरकारी अस्पताल में जन्म होता है तो जन्म होते ही 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। 1 वर्ष की होने पर 5,000 रुपए मिलेंगे। जब कक्षा 1 में प्रवेश लेगी तो 10,000 रुपए मिलेंगे और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपए और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपए मिलेंगे और कक्षा 12 में ये आपकी राशि जो है ये 25,000 रुपए हो जाएगी। और 21 वर्ष की जब आयु हो जाएगी आपकी बेटी की तो उसे 70,000 रुपए मिलेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है सखियों कि ये जो राशि है ये तभी प्राप्त होगी जब बेटी आपकी पढ़ेगी। जैसे ही आपने उसकी पढ़ाई रोकी वैसे ही सरकार के द्वारा ये राशि रोक दी जाएगी। अब हर चीज के लिए, क्योंकि कुछ हमारे माता पिता जो हैं वो अभी बच्चों को जन्म देने वाले भी होंगे, तो अगर उनके बेटी होती है और उन्हें इस योजना का लाभ लेना है तो जरूरी दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड माता पिता का, निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और उस जन आधार कार्ड से जो बैंक खाता आपका जुड़ा है उसकी आपको एक कॉपी देनी है, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और ये प्रूफ कि वो सरकारी अस्पताल में पैदा हुई है, जाति प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड होगा जन आधार से जुड़ा हुआ होगा और आपका ईमेल एड्रेस। सखियो यह योजना पहले से ही चल रही राजश्री योजना का उन्नत रूप है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा दर बढ़ाना है। तो इस योजना से जुड़ने वाले सभी माता पिता से निवेदन है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य दें और आप इसके लिए ओजस पोर्टल जो कि परिवार कल्याण विभाग का है आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका स्वीकार होने के बाद आपकी एक आईडी बनती है जिसे आप PCTS आईडी बोलते हैं। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी होती है। यही आईडी आपकी स्कूल में जमा होती है जिसके आधार पर आपको राशि स्वीकृत होती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप देना चाहते हैं कोई जानकारी या कुछ और जानकारियां हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संदेश अवश्य लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9530012020 और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है engoyairkota@gmail.com। हमेशा याद रखिए सखियों कि आपके जो पत्र हैं या आपके जो संदेश हैं ये हमें प्रेरणा देते हैं हर बार कुछ नया करने की। और सखियों ये भी याद रखिए कि शब्द जो हैं ये घाव भी देते हैं और मरहम भी होते हैं। हमारी बेटियां नए आकाश में उड़ सके, हर घर में सम्मान, विश्वास और मुस्कान बनी रहे। अब दीजिए अपनी सखी तेज मोहन को अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई की मनोरंजन सेवा के कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे। और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे। तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की

0: आज जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को

0: आता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था। और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे,
1: पिटाई नहीं हुई थी।
0: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था। और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं, नाटक करता रहा
1: जी।
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे। रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक

0: लिख जीते हैं।
1: तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
2: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
2: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
2: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
2: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
2: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है, हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
2: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
1: जी छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
2: पुरानी
1: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
2: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
2: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी।
2: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे।
1: जी जी, जी।

0: मिला।
1: आप पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
2: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
1: जी,
2: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरे अनंत जो कर रहे
2: जी
1: हैं।
2: जी जी उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
2: नहीं,
1: हाँ।
2: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
1: वाह, हाँ।
2: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे।

0: एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह, हाँ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमराप्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाँव आया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा

0: यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, ढाई तीन सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: किया।
1: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
2: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
1: जी।
2: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
1: जी।
2: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
2: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
2: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
2: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
2: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है, लेकिन हमें तालियां मिलती है।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
2: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
2: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
2: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
1: जी।
2: और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूं। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
2: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल

0: मिला मुझे उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
1: जी जी,
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हुए क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह, लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश

0: ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की मायाई हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक जय घोष। वंदे मातरम् एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक

0: रंग तरंग
1: कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: भक्ति गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमानी का संगीत था सोजे दिल इस एल्बम से। इस गजल को हमने आपको सुनवाया ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगरधरिया और श्रेया घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
4: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
4: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
3: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
4: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
3: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
4: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
3: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
4: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
4: बिल्कुल,
3: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
3: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
3: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
4: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
3: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
4: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
3: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
4: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई न कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
3: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
4: जैसे
3: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
4: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
3: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
4: जैसे
3: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
4: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
3: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
4: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप

0: आईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ। पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूध। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा उनके बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती जाती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में

0: पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह खा देंगे।

0: आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में है। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: पन्नू दास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनरदास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं। और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। दिन का 1 बजने को है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। CBI टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के SOG की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। SOG के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न

प्रदर्शन की है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने FIR दर्ज करवाई है। इसके बाद SOG ने RPSC के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के दो केन्द्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए यह चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। पलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन अड्डे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा, तो बिल्कुल सही बात तो है क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली है उसे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफी सुविधा हो जाती है ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी एक और साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी, तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में? और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं या गाते झूमते नाचते अपनी उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी, पहेली, कोई, समझ, सवाल जवाब, ख्याल, जीना, सहारा, अनजानी, बहती, झूमती, गाती जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं, और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी, पहेली, सवाल जवाब, मुश्किल, ख्याल, महका, मन, नदी धारा, उलझन, गाती झूमती, रचना या रचती, अफसाने, हकीकत, सपना, कहानी, अनजानी, जानी पहचानी।

सहारा बेसहारा, जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं। तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए।
0: क्यों बच्चों, ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुगली, करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: से ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अपना करो सवाल बच्चों, अपना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन

बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो, हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारी एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारी एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए, तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई, तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली, और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे सपने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथवा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुनें तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है, और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में। तो हम उन्हें बता दें, जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया, दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

0: वे मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो

सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

साथ ही इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती।

0: इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ भरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल

0: हासिल कर लिया है। एडापड़ी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक

0: में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

0: सेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही सी आई डी है वो।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला। हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। क्या पिताजी और क्या माता, सासू ससुराल।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल।

0: एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, बताया भी जाएगा,
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
0: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
0: एक्सचेंज कर लेते, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
0: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
0: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
1: भाई मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर
0: से आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
0: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
0: बिल्कुल आनंद,
1: संतुलन जरूरी है,
0: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सुनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियां आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली

0: पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
1: कितनी
0: वो
1: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र है और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है।

0: इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं, एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जान

0: है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत स्वस्थ रहते थे, और काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग समझ घर में चक्की भी चलना है तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है, उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खाके यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खाके ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में तो आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं, अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी थी इस गाने में है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
1: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
0: बहुत सारे हमारे साथी,
1: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
0: और अब लेते हैं एक
1: अंतराल।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से।
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और

0: संतुलित बनाएं, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: बात है, बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे, उनको हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली, कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं, खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं

0: पढ़ा तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: तो
1: वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा, विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक
0: दिन। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता न होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दावेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए, है ना।
1: हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: बहुत सुंदर बताइए,
0: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें

0: पौष्टिक खाने खा के भी आप खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था तुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती क्यों।

0: ना भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है।
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में
1: बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी

0: तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
2: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
2: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
2: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
2: जिनकी
1: आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक कलाकार के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
2: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
2: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
2: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
2: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी।

0: जिसमें यूनुस एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज
0: लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत,

0: नाटक जो बादल सरकार के सारे, तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: अनुराधा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुन
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसे।

0: फिल्म हमने देखी थी
1: वाह वाह,
0: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें
1: जी,
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता
1: खुद गाते था।
0: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
0: हाँ, मेरे कहने गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी,
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: बाबा
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हा, हा, हा, हा।
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस दौर में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप
0: तो, तो, तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी,
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ,
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: इनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर

0: अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी।
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी।
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकादमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
1: जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए, सब
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे,
1: क्या बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है,
1: वाह,
0: जिंदगी की बस्ती में

0: मुश्किलों का मेला है। और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।
0: बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं से, कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं
1: वाह वाह वाह,
0: से।
1: क्या

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लू ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में?
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारा संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
0: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग कर लेना,
1: तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत के पास आती कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, हाँ। क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू नाम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे तो
1: घर में वो पारिवारिक उसके पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनकी, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो

0: और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली है।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
1: बिल्कुल
0: उनकी कॉलोनी थी तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ, एकता बचपन क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना है।
0: जी जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरी राम आचार्य। हरी राम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब गजब। ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरी राम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था।

0: ये सब चीजें जो संस्कार में, और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे, तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात कह,
0: सारी बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया।

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और ये खास शेर है, वो
1: स्वागत
0: मेरे दिल के किसी

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बस
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: ताजी।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह,
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा

0: मिट्टी का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और
0: आप
1: से ये सुन रहे हैं।
0: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है ना, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाड़ी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी, जी।
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला
1: तो आप
0: बड़ा
1: सब
0: था,
1: जानते थे।
0: और फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था, सब कुछ, नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है। उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यू नो, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये,
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिक रहे उड़ीसा में
1: जी जी,
0: वो करते रहे और उनका बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो मैंने उसको बाकायदा एक फिल्म

0: का तो भाई था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है।
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया था।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहाँ किए। इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच जो हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार?
0: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था,
1: जरूरत
0: से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: मैं करता हूं।
0: हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है
1: बिल्कुल।
0: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है
1: बिल्कुल होती है
0: ना, जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो 4 कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं,
1: तो आप उनको
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ। एक बार मैं बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये सब मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के लेके उसको भी पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था, तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया, स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जय

ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: उम्मीदों की रोशनी, सपनों की उड़ान और युवा जोश के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में। और आपके साथ हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं खुशी
1: और मैं कुणाल।
0: दोस्तों, युवाणी एक ऐसा मंच है जहां हर आवाज में आत्मविश्वास है, हर बात में नई सोच है और हर पल में कुछ नया सीखने का अवसर है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने खुशी। जिंदगी की भाग दौड़ में कभी हम हंसते हैं, कभी सीखते हैं तो कभी खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और युवाणी वही कोशिश है, युवाओं के विचारों को एक नई पहचान देने की।
0: दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ मनोरंजन की ही नहीं होती बल्कि उन मुद्दों की भी होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कभी इतिहास से सीख, कभी वर्तमान की बात, तो कभी ऐसे विचार जो दिल को छू जाए।
1: और सच कहें तो युवा वही नहीं जो सिर्फ उम्र से जवान हो, बल्कि युवा वो है जिसकी सोच में ऊर्जा हो, जिसके सपनों में हिम्मत हो और जिसके इरादों में उड़ान हो।
0: तो अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम होने वाला है जोश, ज्ञान और सकारात्मकता का शानदार संगम।
1: और याद रखिए दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हिम्मत और कोशिशें रुक जाया करती हैं।
0: इसीलिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए
1: और अपने सपनों को सच करने की तरफ कदम बढ़ाते रहिए।
0: दोस्तों, युवाणी के सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही प्यारे गीत के साथ।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कुणाल और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ खुशी। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि प्रकृति जो हर रोज हमारे आसपास होती है, पेड़, नदियां, सूरज, चांद, बारिश, हवा, ये सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने खुशी। और अगर हम एकदम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर हिस्सा हमें कोई ना कोई सीख जरूर देता है।
1: बिल्कुल कुणाल।
0: और आज के हमारे सेगमेंट, आज के संवाद में हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ हम ये देखेंगे कि हमें प्रकृति से किस तरह से जीवन जीने के नियम सीखने को मिलते हैं।
1: कुणाल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही ना जीवन के हालात भी बदलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने खुशी। और अगर हम हमेशा गर्मी, जैसे मान लो मौसम हमेशा गर्मी का रहे, तो कितना अनकंफर्टेबल सा रहेगा ना, कितना बोरिंग सा रहेगा। हमें इससे पता ही नहीं चल पाएगा कि बारिश की असली अहमियत क्या है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जो मुश्किल वक्त आता है वो जरूरी है। उसी से हमें मजबूती मिलती है, उसी से हमें जो हमारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनका हमें पता चलता है, उनकी अहमियत पता चलती है।
1: बिल्कुल कुणाल। और पेड़ों को देखो, पत्थर खाने के बाद भी वो इंसानों को फल ही देते हैं। मतलब दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपनी अच्छाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए।
0: बिल्कुल खुशी। और अगर हम नदी को देखें तो नदी भी हमें कितनी बड़ी सीख देती है। नदी के रास्ते में कितनी भी चट्टाने आती हों, कितने भी मोड़ आते हों, लेकिन नदी कभी नहीं रुकती है। वो अपना रास्ता हमेशा खुद बना लेती है।
1: यानी जीवन में रुकावटें आए तो हार नहीं माननी चाहिए बल्कि आगे बढ़ने का नया रास्ता ढूंढना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सूरज को देखो, हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौट आता है। यानी एक बुरा दिन कभी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता।
1: कुणाल, ये बात सच में दिल को छू जाती है। कई बार लोग ना एक असफलता से ही टूट जाते हैं, जबकि प्रकृति हर दिन नया मौका देती है।
0: और चांद को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो कभी पूरा होता है, कभी आधा और कभी बिल्कुल छोटा सा, फिर भी उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती।
1: मतलब इंसान को भी हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कमजोर महसूस करना भी नॉर्मल होता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने खुशी। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा मोटिवेट भी करती है, वो ये है कि किस तरह से एक बीज पूरा का पूरा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना। एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहकर भी हार नहीं मानता।
1: हाँ कुणाल, वो धीरे धीरे मेहनत करता है, समय लेता है और फिर एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। यानी सफलता भी धैर्य और मेहनत से मिलती है, जल्दबाजी से नहीं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, प्रकृति हमें ये भी सिखाती है कि संतुलन बहुत जरूरी है। ज्यादा बारिश भी नुकसान करती है तो ज्यादा धूप भी। हर चीज सही मात्रा में होती है तो ही वो अच्छी होती है, और हर चीज एक मात्रा में ही होनी चाहिए।
1: तो दोस्तों, अगर हम सच में जीवन को बेहतर बनाना

0: चाहते हैं तो प्रकृति को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी शुरू करना होगा।
1: क्योंकि प्रकृति बिना बोले ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, और शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, बस सीखने वाला चाहिए।
0: तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, राजस्थान की धरती सिर्फ वीरों की कहानियों से ही नहीं बल्कि अपनी अद्भुत कला, स्थापत्य और गौरवशाली इतिहास से भी पूरे देश में पहचानी जाती है।
1: और जब बात हो राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों की तो चित्तौड़ का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। यहाँ हर पत्थर वीरता और संस्कृति की कहानी गाता है।
0: दोस्तों, आज रंग रंगीलो राजस्थान सेगमेंट में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक अद्भुत स्थापत्य कीर्ति स्तंभ की।
1: कीर्ति स्तंभ यानी यश का स्तंभ। यह केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है।
0: दोस्तों, ये स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी चीजा बघेरवाल ने करवाया था।
1: ये करीब 22 मीटर ऊंचा स्तंभ है और इसमें 7 मंजिलें हैं। इसकी दीवारों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं।
0: दोस्तों, इस स्तंभ का संबंध जैन धर्म से भी है। इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मूर्तियां और जैन धर्म से जुड़ी कई आकृतियां उकेरी गई हैं।
1: अगर कोई इस स्तंभ को करीब से देखे तो उसे लगेगा जैसे पत्थर बोल रहे हैं। अगर मंजिल, हर खिड़की, हर नक्काशी अपने भीतर सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए है।
0: और कुणाल, सबसे रोचक बात यह है कि उस समय ना आधुनिक मशीनें भी नहीं थी।
1: हाँ।
0: और ना ही टेक्नोलॉजी थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर भी इतनी अद्भुत कारीगरी तैयार की गई। ये हमारे पूर्वजों की कला और मेहनत का शानदार उदाहरण है।
1: एकदम सही कहा तुमने खुशी। और चित्तौड़गढ़ के किले की हम बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कीर्ति स्तंभ उसकी शान को और भी बढ़ाता है।
0: दोस्तों, जब सूरज की किरणें इस स्तंभ पर पड़ती हैं तो इसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी हमारे सामने जीवित खड़ा हो।
1: तो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ हमें सिखाता है कि कला, संस्कृति और इतिहास को संजो कर रखना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी विरासत से जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल। राजस्थान की पहचान सिर्फ रेगिस्तान और लोक नृत्य नहीं है बल्कि यहाँ की ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं, यहाँ की असली पहचान।
1: हाँ दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी में इतिहास बसता है और यहाँ की धरोहरें इस इतिहास को अमर पहचान देती हैं।
0: दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा नगमा।

0: दोस्तों, मिट्टी से सोना उगाने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के द्वारा देश के लिए किया जाने वाला कार्य बड़ा ही अद्वितीय है। दिन की तपती धूप में खेत में मेहनत करना, विकट परिस्थितियों में भी दृढ़ता से खड़े रहना, यही इनकी पहचान है।
1: और इसी मेहनत और दृढ़ता को सलाम करते हुए हमारी भारत सरकार ने किसान भाइयों के काम को और भी ज्यादा सुगम बनाने के लिए उन्हें AI तकनीक से जोड़ने की तरफ कदम उठाया है।
0: बिल्कुल, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत विस्तार को लॉन्च किया गया और इसके लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारत विस्तार एक AI टूल है जो लगभग अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। भारत विस्तार में विस्तार का पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज।
1: यानी कि ये वर्चुअल सिस्टम है जो किसान भाइयों की मदद करेगा ये जानने में कि अभी किसानों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, मौसम कैसा रहने वाला है, कहीं अब बेमौसम बारिश आकर फसल को खराब तो नहीं कर देगी, उस हिसाब से फसल की बुआई कटाई से संबंधित निर्णय ले सकेंगे, मंडी का भाव पता चलेगा, बीमा और मिट्टी की जान जैसी भी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी।
0: और इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और काफी सारी समस्याएं कम हो जाएगी। ये सभी जानकारी भारत विस्तार ऐप या फिर 155261 पर कॉल करके पता की जा सकती है। इसमें एक कृषि विशेषज्ञ है जो AI वॉइस असिस्टेंट भारती बात करेंगी।
1: दोस्तों, आने वाले समय में इसमें भारत से जुड़ी सभी किसानों और खेती से संबंधित योजनाओं को जोड़ा जाएगा, पर फिलहाल इसमें 10 कृषि योजनाओं की जानकारी मिलेगी, जिसमें PM किसान, PM फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, प्रति बूंद अधिक फसल, PM कृषि सिंचाई योजना, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, कृषि अवसंरचना कोष और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है।
0: सही कहा तुमने खुशी, और इसकी शुरुआत हिंदी और अंग्रेजी भाषा से हुई है, पर आने वाले महीनों में इसमें तमिल, बंगाली, असमिया, कन्नड़ सहित 11 भाषाओं में उपलब्ध होगी। यानी कि हम में से हर कोई जो भी इस सुविधा का लाभ लेने चाहता है वो अपनी लोकल भाषा में इसका लाभ ले सकता है।
1: योजना का शुभारंभ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में किया और इसका प्रथम चरण 17 फरवरी 2026 को लॉन्च कर दिया गया है। ये AI, ICAR और अलग अलग कृषि अनुसंधान केंद्रों से डेटा एकत्रित करके आपको जानकारी देता है।
0: तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो इस ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इस एक ही ऐप में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो सब एक साथ मिल जाएगी। इससे आपका काम काफी सुगम होगा और इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी।
1: दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और गीत।

0: दोस्तों, हम में से कहानियाँ तो हर किसी को पसंद होगी, है ना खुशी?
1: बिल्कुल कुनाल।
0: कहानियाँ हमें प्रेरित भी करती हैं, कहानियाँ हमारे ऊपर एक बहुत गहरा असर डालती हैं, तो इसलिए आज हम हमारे दोस्तों के लिए एक कहानी लेकर आए हैं।
1: दोस्तों, ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, जिसका नाम है नमक का दरोगा। ब्रिटिश राज के दौरान सरकार ने नमक पर सख्त कर यानी टैक्स लगा दिया था, जिससे एक बड़े काले बाजार का जन्म हुआ। नमक विभाग का दरोगा बनना सबसे आकर्षक नौकरियों में से एक बन गया था, क्योंकि इसमें रिश्वत के माध्यम से अकूत संपत्ति बनाने के अनंत अवसर थे।
0: कहानी में प्रवेश होता है मुंशी वंशीधर का, जो एक युवा, उच्च शिक्षित और अत्यधिक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। अपने परिवार की भीषण गरीबी को और अपने पिता की ऊपरी आय वाली नौकरी खोजने की सलाह के बावजूद वंशीधर को नमक के दरोगा का प्रतिष्ठित पद मिल जाता है और वह पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लेते हैं।
1: सर्दियों की एक सर्द रात, वंशीधर को नदी के पास गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वो जांच करते हैं और नमक की एक बड़ी अवैध खेप को पकड़ते हैं। उन्हें ये जानकर झटका लगता है कि ये तस्करी अभियान इलाके के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित जमींदार पंडित अलोप दीन का है।
0: अलोप दीन एकदम बेफिक्र होकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उनका मानना था कि पैसे से किसी को भी और कुछ भी खरीदा जा सकता है। वह मुस्कुराते हैं और वंशीधर को मामले को रफा दफा करने के लिए एक अच्छी रिश्वत की पेशकश करते हैं। वंशीधर इनकार कर देते हैं।
1: हैरान लेकिन आश्वस्त, अलोप दीन रिश्वत की रकम बढ़ाते जाते हैं। वो 1,000 रुपए से शुरू करके चौंका देने वाली 40,000 रुपए की पेशकश करते हैं, एक ऐसी रकम जो वंशीधर के परिवार की पीढ़ियों को सवार सकती थी।
0: इस अकल्पनीय धन से विचलित हुए बिना वंशीधर पुलिस को उस शक्तिशाली जमींदार को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। पूरा शहर सदमे में आ जाता है। हालांकि अलोप दीन की अपार संपत्ति भ्रष्ट न्याय प्रणाली में अपना जादू चलाती है। वह वकीलों, गवाहों और जज को खरीद लेते हैं। अलोप दीन को ससम्मान बरी कर दिया जाता है और वंशीधर

0: को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है।
1: वंशीधर अपमानित होकर घर लौटते हैं। उनके पिता उनके आदर्शवाद के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाते हैं। उनकी माँ की तीर्थ यात्रा की योजनाएं बर्बाद हो जाती है और उनकी पत्नी उनसे बात करने से इनकार कर देती है। वंशीधर आर्थिक रूप से बर्बाद और सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा साफ रहती है।
0: और पता है खुशी इसके बाद क्या होता है? एक हफ्ते बाद वंशीधर के साधारण घर के सामने

0: साफ रहती है।
1: और पता है खुशी इसके बाद क्या होता है? एक हफ्ते बाद वंशीधर के साधारण घर के सामने एक शानदार रथ आकर रुकता है। उसमें से पंडित आलोप दिन बाहर निकलते हैं। वंशीधर के पिता तुरंत अपने बेटे की मूर्खता के लिए माफी मांगने लगते हैं, लेकिन आलोप दिन उन्हें रोक देते हैं। हाथ जोड़कर वह शक्तिशाली जमींदार वंशीधर की ओर मुड़ता है और कहता है,
0: उस रात आपने मुझे गिरफ्तार करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। आज मैं अपनी मर्जी से कैदी बनकर आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को खरीदा है, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मेरा पैसा नहीं हरा सका।
1: आलोप दिन एक कानूनी दस्तावेज निकालते हैं। वह वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति के स्थायी मैनेजर के पद की पेशकश करते हैं, जिसमें भारी वेतन, दैनिक भत्ता, एक घोड़ा और नौकर शामिल है। आलोप दिन समझाते हैं कि अपनी इस विशाल संपत्ति को संभालने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी ईमानदारी को कभी खरीदा ना जा सके। वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोप दिन से कलम ले लेते हैं।
0: तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदारी का अपना इनाम होता है। वंशीधर ने ईमानदारी को तब चुना जब ऐसा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन और नुकसानदायक था।
1: चरित्र सम्मान दिलाता है। यहाँ तक कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति भी अंततः सच्ची ईमानदारी की तलाश करता है और उसका सम्मान करता है। आलोप दिन को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह वास्तव में भरोसा कर सकता है।
0: आदर्शवाद में ही आशा है, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें सिखाती है कि जीवित रहने के लिए हमें अपने आदर्शों से समझौता करना होगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है।
1: तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारे सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब हमारी सिचुएशन इतनी कठिन होगी कि हमारा मन नल जाएगा, लेकिन हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि अंत में उसका फल अच्छा ही होता है।
0: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

बैट पे। जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम मना रहे हैं भारत के पांचवें राष्ट्रीय माननीय फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती। फखरुद्दीन अली अहमद जी का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था।
1: उनके दादा खलीलुद्दीन अली अहमद असम के कचारी घाट गोलाघाट के पास से थे। उनके पिता कर्नल जलनूर अली थे और उनकी माँ दिल्ली के लोहारी के नवाब की बेटी थी।
0: दोस्तों उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल और दिल्ली के सरकारी हाई स्कूल में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे 1923 में इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। 1928 में उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में कानूनी अभ्यास प्रारंभ किया।
1: सन 1925 में उनकी मुलाकात श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हुई, जिसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। श्री जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और वो जीते।
0: और 1938 में बारदोली के नेतृत्व में उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया गया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पूरा समर्थन दिया, जिसकी वजह से इन्हें 3 साल से ज्यादा का समय जेल में बिताना पड़ा।
1: उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सन 1952 में असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद सन 1957 से सन 1967 तक असम में विधायक रहे। सन 1971 से दोबारा केंद्रीय राजनीति में आए और कई मंत्रालय संभाले। राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने से पहले वे खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
0: और 11 फरवरी 1977 में 72 साल की उम्र में पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले वे दूसरे राष्ट्रपति अहमद जी हुए। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अब हम हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट करवाने वाले हैं। याद है आपको, जब हम सब छोटे थे, हमारे घर में वो डब्बे वाला टीवी होता था जो पीछे से कितना मोटा हुआ था करता था ना, और एक एंटीना भी लगा हुआ होता था ऊपर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसको हम सही करते थे। जब ऊपर जाता था वो नीचे पूछता था, आया क्या, आ गया क्या, सिग्नल आया नहीं आया, है ना।
1: बिल्कुल कुणाल, और उस समय तुमको पता है दूरदर्शन चैनल चलता था जिस पर एक बहुत ही सुंदर सा प्रेरणा भरा नाटक आता था जिसका अच्छा। नाम था मालगुड़ी डेज।
0: हाँ।
1: मेरे दिमाग में तो ना उसकी धुन भी बजने लगी और ना एकदम से नॉस्टैल्जिया ने ना मुझे हिट किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी वो धुन बज रही है उनकी। और दोस्तों, आज हम मालगुड़ी डेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम मना रहे हैं मालगुड़ी डेज के लेखक श्री रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी, यानी कि आर के नारायण जी।

0: की पुण्यतिथि। दोस्तों, आर के नारायण जी का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
1: वो 6 भाई और 2 बहनों में से दूसरे नंबर के बेटे थे। उनका छोटा भाई रामचंद्रन बाद में जैमिनी स्टूडियोज के एडिटर बने और उनके सबसे छोटे भाई लक्ष्मण कार्टूनिस्ट बने। मतलब उनके परिवार के सदस्यों के करियर का भी उन्हें फायदा और उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला।
0: बिल्कुल।
1: उनके पिता स्कूल के हेडमास्टर थे और नारायण जी की शुरुआती स्कूली शिक्षा उनके पिता के स्कूल में ही हुई थी।
0: अब उनके पिता जो थे वो स्कूल के हेडमास्टर थे, तो उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो इसलिए उनकी जो नारायण जी की पढ़ाई है वो काफी डिस्टर्ब होती थी, है ना। इसलिए क्या किया गया कि नारायण जी को उनकी नानी के यहाँ पे भेज दिया गया।
1: अच्छा।
0: जहाँ उन्होंने अपना काफी सारा समय प्रकृति में बिताया, जैसे कि वो अकेले रहते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, वो प्रकृति में ऑब्जर्व करते रहते थे कि कैसे प्रकृति में क्या सब हो रहा है।
1: दोस्तों, नारायण जी को ना बचपन से ही पढ़ने का भी बहुत शौक था। उन्होंने काफी सारे लेखकों की किताबों को पढ़ा था, क्योंकि उनके परिवार में इंग्लिश में बात की जाती थी, तो वो विदेशी लेखकों जैसे डिकन्स, वॉडहाउस, ऑर्थर कॉनन डॉयल और थॉमस हार्डी जैसे लेखकों के साहित्य को पढ़ा करते थे।
0: बिल्कुल। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे तो एक शिक्षक के तौर पर की थी, पर उनको जल्दी समझ में आ गया कि पढ़ाना तो उनके बस की बात नहीं है, उन्हें लिखना काफी पसंद है। तो इसलिए उन्होंने 1930 में अपनी पहली नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी। इसी किताब में उन्होंने मालगुड़ी की भी रचना की।
1: दोस्तों, उनके जीवन में उन्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, खास तौर पर आर्थिक रूप से, पर उनके परिवार और उनके दोस्तों ने उनके लेखन वाले फैसले का पूरा सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत उन्हें आगे चलकर द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर जैसी कमाल की साहित्यिक रचनाएं की।
0: और दोस्तों, क्योंकि उनकी रचनाएं इतनी कमाल की थी, इसलिए उन्हें अपनी रचनाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले। उन्हें 1960 में अपना पहला बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये उन्हें अपनी किताब द गाइड के लिए मिला, जो आगे चलकर जिस पर एक मूवी बनी, और उस पर उस मूवी को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनको तो अवार्ड मिला ही सही अपनी साहित्य के लिए, इसके उस पर जो मूवी बनी उस पर भी उनको पुरस्कार मिला। 1964 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1989 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और 2000 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था नारायण जी का जीवनी। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इसी जोश, इसी मुस्कान, इसी शानदार साथ के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, बातें छोटी हो या बड़ी, अगर अंदाज दिल से हो तो हर पल खास बन जाता है, और आज आपके साथ बिताया गया ये वक्त हमारे लिए भी बेहद यादगार रहा।
0: तो दोस्तों, जाने से पहले यही कहना चाहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रहिए और जिंदगी के हर पल को पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ जीते रहिए।
1: हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए अंदाज और ढेर सारी बातों के साथ।
0: अभी के लिए इजाजत दीजिए आपके दोनों रेडियो दोस्त, मैं कुणाल
1: और मैं खुशी को।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM 102-103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई।

है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.03.6 मेगा हर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में सबसे पहले सुना रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में, समीर की गीत रचना और जतिन ललित का संगीत। फिल्म है कभी खुशी कभी गम। लीजिए सुनते हैं गीत।

अगला गीत सुनाने जा रहे हैं फिल्म कभी अलविदा न कहना से, शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और कैरलीसा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत।

अगला गीत प्रसारित कर रहे हैं फिल्म कबीर सिंह से अरिजीत सिंह की आवाज में। मिथुन का गीत है और उन्हीं का संगीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म कहानी 2 से। अरिजीत सिंह की ही आवाज़ है और अमिताभ भट्टाचार्य का गीत और क्लिंटन क्रेजो का संगीत। लीजिए सुनिए ये गीत।

साथ हमारा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:27 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव।

0: पर मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। CBSE ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर

0: में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, AI और स्टार्टअप जैसे नवाचार को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8,00,000 रुपए में सौदा किया। SOG ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही

स्वायत्त शासन विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सब

0: 40 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अट्रू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए

0: आदतों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों बारां जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया बहुल शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बारस्तूनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष में बारां में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बारां जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें बारां की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही बारां जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखारा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइपलाइन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 शाखा रा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरज

0: मुखीरा बीजां सारू करी ची है। इंसागई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4023 रुपया और बाजरा रो मोल 2900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माय सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 शाखा रे खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया रा खर्च कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास योजना ने ही मंजूरी देनी।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायो 85.20% फीसदी पास फेक्या। इम्तिहान माय लड़कियां रो नतीजो 88.86 फीसदी जबकि लड़का रो नतीजो 82.13 फीसदी रहो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माय लीरीजी परीक्षा माय 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जमायो 15,07,000 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायो 86.78 फीसदी पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां माए 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इन साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रहो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इना मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जदका सेकंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माय फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माय हेराफेरी करण रा आरोप माय 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माय राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण रीठा पड़ी। इन पाछे वहां कानियों RPSC रा रिकॉर्ड माय फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माय सौदो करण रीठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लिनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपण उबा कर जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला रे बजाय नौकरी देवन वाला बनवा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवानों तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी जिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करती रही।

0: रुचि है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत तो ही है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावणो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म हो जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए राखी जी मीटिंग माए दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी और बालोतरा माए आंक कामा सारू 10,76,00,000 रुपया जारी करी चिया। इन तहत दौसा और डीडवाना कुचामन माए भाटा उद्योग चूरू माए लकड़ी बुनिया सामान फलौदी माए सोना मुखी भंडारण और बालोतरा माए टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया जावेला। राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथा काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय रे ओरों 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारे में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर SP सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगा ने इनो जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू में आई आज प्रगणका सारू खास शिविर लगाई चिया। अरबे मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगनी हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबु गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर माए दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर बीकानेर और चित्तौड़गढ़ माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और बीकानेर माए लू रा हालात रहा। राजधानी जयपुर माए लू सरीखा हालात विचे कई ठोणा प्रशासन सड़का माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नु लागोड़ी सरहद कने रा हलका माए काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन विच राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नी मिलिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला माए खास अभियान राते लिया जे 837 नमूना मायू 223 ते मानका माथे खरा नी उतरिया। सलुम्बर रा PMC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया। इस मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुविधा रो फायदो लेवन बाबत कहो। वे DFMT मधु टीन शेट लगावन रा काम री शुरुआती कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सरू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला। ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं ठौड़ माथे है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान माथे है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 साखाना सरकारी मूल में बढ़ोतरी री

0: रो नतीजो जारी कीनो लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियां तय करी जी। और प्रदेश रा तुणी और लंका उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102.03.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: जानकारी और लोक गीता सु भरियो कार्यक्रम चौपाल न सुन बाला मा का संदा करशान बण भाई कताई रामू भाई की अडी सु घणी घणी राम राम राम राम जी करशान बण भाई ओ राम राम। चौपाल को भगत आपनो हो गयो छे माल खेत में सु आप आई गया होगा और नरा करसान बन भाई तो माल खेत में काम भी कर रहा होगा क्योंकि अबारू गर्मी का दन छे और गर्मी का दना में जो छे ठंडाई में काम करनी पड़े क्योंकि आजकल तो देखो छुकी आग बरस रही छे और करसान बन भाई हो ऐसी स्थिति में आपनों तो ध्यान रखा ही सही एक साथ का साथ अपना जो अणबोलिया साथी छे डंडा डोर छे वहाँ को विशेष तौर से अपना ताई ध्यान रखना छो क्योंकि वो बोलो को ना वहाँ की भाषा तो अपने ताई समझनी पड़ेगी भाई यहाँ के ताई काई छो और कई मांग छे यहाँ की करसान बन भाई जब आप पशुपालन करा चाह तो घनी सारी बातों को अपने ताई ध्यान रखनी चाहिए जब जार आप पशुपालन बड़ी पर आधारित रहे। और आज को जो विषय छे बहुत ही बढ़िया विषय छे गर्मी में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा अपन कैसा करा और टीकाकरण कब करावा और कैसे टीका लगावा एक ही आप पूरी जानकारी होनी चाहिए जब जार आप बढ़िया पशुपालन कर पाऊंगा और गर्मी से अपना पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा कर पाऊंगा। तो इन विषय पर जो है आज अपनी चौपाल में भावना है डॉक्टर जय प्रकाश मीणा आप जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मोकापाड़ा में कार्यरत। तो करसान बन भाई इन विषय से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है तो आप सीधा चौपाल में फोन कर सके छे और फोन करके जो भी अपना डंडा डोर में जो मगज हारी बीमारी हो रही है या कान का परेशानी हो रही है तो सीधा डॉक्टर साहब से आप फोन कर सको छो। वही जाने पहचाने अपना टेलीफोन नंबर छे 0744-294-1142। तो करसान बन भाई अब चौपाल में अपन डॉक्टर साहब को स्वागत करा चाह तो डॉक्टर साहब आपको माँ की चौपाल में घणो घणो स्वागत छे। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: डॉक्टर साहब आप देख ही रहा छो कि गर्मी थोड़ी जोर की पड़ रही है और नरी जगह तो 47 डिग्री हो रही है 45-46 हो रही है कोई 47 ऊपर भी खड़ रही है तो ऐसी स्थिति में आप तो देखो छाया में बढ़ जाऊँ चाहे या फिर आजकल तो ए सी कूलर में बढ़ जाऊँ चाहे अपना डांडा डोर तो जो है कतो बाड़ा में बंधिया रहे टीन शेड के नीचे बंधिया रहे तो ऐसी स्थिति में जो है अबारू गर्मी में विशेष तौर से अपना जो पशुपालक भाई है वन कई बातों को ध्यान रखना चाहिए भाई।
1: रामू भाई ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मौसम विभाग के जो अनुमान है उसके हिसाब से भी इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है तो ऐसे टाइम पे जो पशुपालक भाई हैं अपने उनको खुद के साथ साथ पशु अपने जो पशु हैं उनके गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है उनके पास उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो गर्मी में अपने को ये काम करना चाहिए कि अपन पशुओं को छायादार स्थान पे बांधे जहाँ पर भी हो छायादार स्थान में भी अपने को जैसे किसी टीन शेड के नीचे बांधने की जगह अगर पेड़ की छाया उपलब्ध है तो पेड़ की छाया के नीचे बांधना चाहिए क्योंकि जैसा अपन जानते हैं कि टीन शेड गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना तो अब पेड़ की

0: छाया क्या है, ठंडी रहती है, तो पेड़ की छाया के नीचे बांधेंगे तो हमारे पशु ज्यादा आराम महसूस करेंगे। तो अपने को बांधते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ये है, जैसा अपन को सबको पता है कि लू चलती है दिन में, गर्म हवा चलती है, तो जितने भी हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं, उनको गर्म हवा से भी बचाना है, तो अपन उनको खुले में बांधने की जगह ऐसा कोई व्यवस्था कर दें कि उनको जो खुली हवा है या जो गर्म हवा है वो सीधी उनके शरीर पर ना लगे। जैसे आसपास में हम कोई तिरपाल डाल सकते हैं, या आजकल वो हरे रंग की शीट्स आती हैं, वो शीटें डाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें ताकि जो गर्म हवा है वो सीधे हमारे जो गौवंश हैं या भैंस वंश हैं उनको सीधे ना लगे। तो इस तरह की व्यवस्था अपन कर सकते हैं उनके उनके रहने के लिए।
1: अच्छा, जैसे कि अब रबा की व्यवस्था की बात कर रहे, तो डॉक्टर साहब नरी बाढ़ जो है, जैसे आप बता रहे हो कि भाई अमुक जेठी ताती बाढ़ आओ जाए उठे आपने कान गाय लगाओ, तो नरा पशुपालक बोरिया का टाट न बजूर भी लगाओ जाए।
0: हाँ, वो बहुत अच्छा तरीका है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं ये बताने वाला ही था कि बोरी के टाट को भिगो के अपन लगा सकते हैं, और जैसे भैंस है तो भैंसों में तो वो पसंद भी करती है।
1: अच्छा,
0: कि अगर मान लो अपन शरीर पे भी, भैंस के शरीर पे भी अगर गीला टाट करके डाल देंगे तो भी उसे बहुत आराम महसूस होगा।
1: अच्छा, हाँ, तो आप
0: तो भैंस के शरीर पे जैसे अपन गीला बोरी का टाट करके अगर डाल देंगे गर्मी में, क्योंकि अपन सब जानते हैं रामू भाई कि है ना, भैंसों को तापमान कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि शरीर काला रहता है, तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: सही बात है।
0: तो इसलिए क्या है, भैंसों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अपन अगर मान लो पानी की व्यवस्था अपने पास उचित व्यवस्था है, तो अपन सुबह शाम नहला भी सकते हैं उनको।
1: अच्छा,
0: या कहीं पे कोई अच्छे पशुपालक भाई हैं और उनके यहाँ व्यवस्था है, आजकल वो फव्वारे सिस्टम भी लगता है जिसमें सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क,
1: बारीक
0: बारीक बूंदें निकलती रहती है।
1: अच्छा,
0: तो वो काम भी अगर व्यवस्था है तो अपन वो काम भी कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: नहीं तो जैसे दूध निकालने से पहले भी अपन कोई व्यवस्था कर सकते हैं।
1: एक किसान साथी लाइन। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, राम राम साहब।
2: राम राम
1: साहब, कहाँ से और कौन बोल रहे? जो
2: भंवरलाल बोल रहे साहब, ठीक रहा कला सुन जिला बोल रही।
1: अच्छा भंवरलाल जी, कहीं सवाल छे आपको?
2: मारो सवाल है कि जैसे मारो भैंस छे, तो वह कहीं जे यो गर्मी को टाइम, गर्मी में टाइम और सर्दी का टाइम, जैसे वो इंजेक्शन लगा था ना आपने वो ज्ञापन को, तो उनको बाद में फोटो पतलो ही कर दो बिल्कुल, जैसे पानी की तरफ फोटो कर दो।
0: अच्छा अच्छा, तो भंवरलाल जी मैं आपको यूँ कहना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि गर्मी में अगर जैसे भैंस को डिहाइड्रेशन होता है ना, पानी की कमी हो जाती है शरीर में।
2: नहीं सर, पानी की कमी तो देख लो आप, 1% भी नहीं पड़ पाता, दिन में 3 बार पानी पिलाऊंगा।
0: अच्छा, तो सर्दी में तो देखो मैं आपको बताऊं, जो पतला पोटा करता है ना कोई भी पशु, तो वो एक तरह से दस्त का संकेत है। अब उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे हम हरा चारा ज्यादा खिलाते हैं तो उस वजह से भी पशु का जो गोबर है वो पतला हो जाता है। दूसरा ये पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकता है कि हमने अगर हर 3 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवाई नहीं दी है, तो इस वजह से भी पतले दस्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर मान लो ये 2 कारण नहीं है, तो इसके अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो कारण कई सारे बनते हैं, लेकिन अपन सामान्य तौर पर देखें तो पेट के कीड़े की दवाई से ये मतलब 100 में से 50-60% तो ये ठीक हो जाएगा, अगर अपन उसको पेट के कीड़े की दवाई दे देंगे तो।
2: अच्छा, तो पेट का कीड़ा की दवाई तो सर ज्ञापन भैंस तो उनका फर्क नहीं,
0: नहीं ज्ञापन भैंस के लिए अलग दवाई आती है भंवरलाल जी, आप वहाँ अस्पताल में जाके बताएंगे ना सरकारी में, तो वो आपको ज्ञापन वाली गोली देंगे ताकि आपको उसमें अपने भैंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
2: अच्छा सर,
0: ठीक है ना।
2: ठीक है सर, धन्यवाद।
0: ठीक
1: जी, आपने चौपाल में फोन करी हुई के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने बता रहे थे और अपनी बातचीत चल रही थी कि भाई फंवारा बढ़िया लगा था तो वहाँ का ठंडा ही रहे, तो अब जैसे तावड़ो मनमान पड़ रही है तो यहीं पर आपने दूध पर भी असर पड़ता होगा।
0: हाँ बिल्कुल, दूध पे असर पड़ता ही, जब भी जैसे बहुत ज्यादा सर्दी होगी या बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इस चीज का जो उत्पादन है उस उत्पादन पे असर पड़ेगा इसे।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए जैसे अपन ऐसा कर सकते हैं कि दूध निकालने के 1/2 घंटा 15 मिनट पहले अपन भैंस या गाय के ऊपर 1 बाल्टी पानी, ठंडा पानी डाल दें।
1: अच्छा,
0: है ना, तो नहला खिला दें उनको टाइप, तो उससे क्या है जो अपना पशु है उसको बहुत रिलैक्स मिलता है ना, बहुत आरामदायक महसूस करता है। तो सिर्फ है ना गर्मी के दिनों में एक बाल्टी पानी ऊपर डालने से भी पशु का दूध 200 ग्राम या 250 ग्राम बढ़ सकता है।

0: सकता है।
1: अरे वाह डॉक्टर,
0: तो और उससे बहुत आराम भी मिलेगा, वो दूध निकलवाते टाइम भी बहुत अच्छा महसूस करेगा। तो अपने को अगर नहलाने की व्यवस्था है या अपन एक दो बाल्टी पानी डाल सकते हैं, तो अपने को दूध निकालने के 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जरूर डालना चाहिए।
1: एक किसान साथी वो लाइन पे चाहे। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, राम राम जी।
2: राम राम,
1: कहाँ से और कौन बोल रहे जो?
2: जितेंद्र बोल रही बाजर।
1: अच्छा जितेंद्र जी, कई सवाल जी चौपाल में आपको?
2: डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ साहब। मैं कह बात से जो मतलब उसका फूल की शिकायत है साहब।
0: अच्छा तो आपने दिखाया क्या किसी को जितेंद्र जी?
2: दिखाया सर।
0: अच्छा फिर? अच्छा क्या मैं आपको बताऊं, देखो फूल निकलने की जो शिकायत है ना, वो अगर अपन मोटे तौर पे देखें तो वो शिकायत एक्चुअली मिनरल्स की कमी की वजह से होती है, है ना। तो उसके लिए अपन जैसे मिनरल मिक्सचर का पाउडर आता है एक, वो अपन दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे, लेकिन इसको करेगा कोई ना कोई, जैसे ये तो मिनरल मिक्सचर तो आप दे दोगे, इसके अलावा जैसे वो चुमड़ी आती है एक, उसको बांध देते हैं पीछे, उससे भी ये शिकायत दूर हो सकती है।
1: अच्छा
0: एक ये है कि जैसे भैंस का जो पीछे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा ऊंचाई पे रखें और आगे वाले पोर्शन को नीचे की तरफ रखें, इस तरीके से बिठाएं उसको, तो भी ये समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा बाकी और एंटीबायोटिक और इलाज वगैरह है तो वो तो आप जो भी आपके नियरेस्ट, जो भी आपके पास में पशु चिकित्सालय है आप वहाँ पे संपर्क करेंगे तो वो दवाई गोली आपको लिख ही देंगे इसमें।
1: ठीक हो ना जीतन?
2: मतलब सर
0: हाँ, ये ब्याती टाइम पे ही होता है जितेंद्र जी, ये है ना पशुओं में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको मिनरल मिक्सचर देना शुरू करो, ये ठीक हो जाएगा। आप 50 ग्राम रोज के हिसाब से, आधा किलो की पैकिंग आती है, आप 50 ग्राम रोज के हिसाब से देना शुरू करो, ये लगभग ठीक हो जाएगा आपका।
2: कितने दिन तक देनी पड़ेगी
0: ये? रोज देनी पड़ेगी 50 ग्राम आप, पर ये और ये ब्याने में भी अच्छा रहेगा, ब्याते टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा। ब्याते टाइम दो दूसरी कई सारी तरह की अपने बीमारियां होती है, जैसे बच्चा अटक जाता है ना, या उसका पोस्चर सीधा नहीं होता, तो ये सब चीज़ें भी वो सही करेगा और उसको ताकत भी देगा। बाद में भी जो आपकी गाय या भैंस है वो अच्छा दूध देगी, अपन उसको पहले से अगर मिनरल मिक्सचर देंगे तो आप ये देना शुरू करो, इससे पक्का फ़ायदा होगा।
1: ठीक छो जितेंद्र जी, आपने चौपाल में फ़ोन करियो। हाँ तो डॉक्टर साहब यहाँ की भी बात देखो जाए छे, और यह नरी समस्या देखवा में मिले छे फूल खड़वा की।
0: हाँ।
1: तो विशेष तौर से जैसे गाय भाषा हम फूल न खड़े डॉक्टर साहब, यहाँ की बात ने अपना आगे बढ़ा वहाँ, तो यही फलिस हुई ये मिनरल मिक्सचर।
0: हाँ पहले से ही
1: है ना, जैसे
0: जब ज्ञापन हो जाता है कोई भी अपनी गाय या भैंस है, तो अपने को उस टाइम से ही उसको 30 ग्राम से 50 ग्राम तक जो भी उसका शरीर का वजन है उस हिसाब से अपन डोज उसको दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। इससे बाद में दूध भी, ब्याने के बाद दूध भी बहुत अच्छा रहता है, और बच्चा होते टाइम होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से भी अपन काफी हद तक दूर रहते हैं।
1: अच्छा
0: तो ये अच्छी चीज है, पेट के कीड़े मारने की दवाई और एक मिनरल मिक्सचर, ये दो चीजें तो अपने को समय टाइम टू टाइम देनी ही चाहिए।
1: बिल्कुल, यहाँ अपना पशुपालक भाई जो थोड़ी सी गलती कर
0: जाए
1: बाद में जा खुराक
0: देते। हाँ खुराक क्या ब्याने के बाद में देते हैं अपने यहाँ, ये मतलब ये परंपरा है कि ब्याने के बाद तो हम गुड़ भी देंगे उसको, दूसरी चीजें भी देंगे, तेल भी देंगे, और ना खाने पीने के लिए बांटा भी देंगे, लेकिन ब्याने तक हम उसको कुछ भी नहीं देते।
1: अभी एकदम से ताकत थोड़ी आओगी,
0: तो एकदम से ताकत नहीं आ पाती। इसलिए क्या है, अपने को ब्याने के 2 महीने या 3 महीने पहले से ये चीजें शुरू करनी चाहिए। खास तौर से मिनरल मिक्सचर तो अपन कर ही सकते हैं, 1.5 से 2 किलो बांटा दे सकते हैं।
1: अच्छा, अच्छा
0: कि अपन 1.5-2 किलो बांटा दे दें तो उसके शरीर को ताकत भी रहेगी, बच्चा भी अच्छा पनपेगा और स्वस्थ पैदा होगा।
1: सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब बात यह आवश्यक डॉक्टर साहब, जैसे आप गर्मी का दंश है तो ये यहाँ दना में किसी जो छे विशेष तौर से अपना डंडा डोर के अंदर बीमारियां होबा की संभावना छे?
0: देखो जैसे अपन गर्मी जो मौसम है उसके बाद में बारिश आती है, और जैसे ही बारिश आती है, एक दो बारिश आते ही जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से गाय भैंस में जो बीमारियां आती है उसमें जैसे गलगोटू आती है,
1: अच्छा
0: है ना, और एक फड़किया आती है, बीक्यू जिसको बोलते हैं, ब्लैक वाटर बोलते हैं, वो आती है। तो इन दो बीमारियों का जो टीकाकरण है वो टीकाकरण अपने को बरसात आने से पहले, यानी कि उसका टाइम अभी है, मई

0: जून,
1: अच्छा अच्छा
0: मई जून में अपने को इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। और ये टीके जितने भी अपने सरकारी अस्पताल हैं और जो उपकेंद्र हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो जो भी आपके पास में उपकेंद्र हो या पशु चिकित्सालय हो तो वहाँ पे संपर्क करके और अपने पशुओं का टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं।
1: अच्छा, जैसे टीकाकरण की आप बात कर रहे हो तो पशुपालक भाई वहाँ जानवर ने ले जाओ या फिर वहीं डॉक्टर साहब आ जाओ जो टीका लगावा?
0: टीके लगाने आ जाएंगे, आज जैसे आप वहाँ पे जाके संपर्क कर लें और अपना समय बता दें तो अच्छा। आपका और उनका जो भी समय बैठेगा आपस में तालमेल से,
1: अच्छा, अच्छा
0: तो वो वहाँ पे आके लगा जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टीकाकरण में एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और अपने को पता है कि टीका लगाते ही जैसे अपने आदमियों में भी टीका लगता है तो बुखार आ जाता है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, दूध भी कम हो जाता है पशुओं का, तो इसलिए क्या अपन थोड़ी सी ठंडाई के टाइम या तो सुबह के टाइम लगाएं टीका या फिर अपन शाम के टाइम लगाएं जब थोड़ी से ठंडा मौसम हो।
1: अच्छा,
0: तो उससे क्या है अपने जो पशु हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से टीका लगवा लेंगे।
1: बिल्कुल ही बात को आप बताएं, ध्यान रखना ठंडाई के टाइम पे आप टीको लगाओ।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बढ़िया। और जैसे कि ये बार थनेला रोग भी नरो देखभाल मिले डॉक्टर साहब, और तो इको कहीं समाधान अपना पशुपालक भाई करे, कहीं सावधानी रखे?
0: देखो थनेला रोग जो है वो इन्फेक्शन के संक्रमण,
1: आप बात करना पहले, एक किसान साथी लेना चाहूँ। हेलो,
2: हेलो, जय श्री राम सर।
1: जय श्री राम साहब, कहाँ से बोल रहे हो?
2: साहब ग्राम बिया केसर पाटनी से बोल रहे हो।
1: क्या नाम है आपको?
2: मेरा नाम ब्रजमोहन सर, मैं आपसे पूछ बताऊँ तो बेस्ट कहीं जबड़ों के बाद में कितना महीना बाद चेक कराऊँ?
0: 3 महीने बाद पता चलता है कम से कम।
2: अच्छा, कम से कम 3 महीने?
0: हाँ, 3 महीने अपन हो जाएं, आप 2.5 से 3 महीने बाद में चेक कराओ उसको, तभी अपने को सही तरीके से अपने को 3 महीने बाद ही पता चलेगा। अगर 3 महीने पहले अपन जैसे अपन ने 2 महीने पे या 1.5 महीने पे चेक करवा लिया ना मोहन लाल जी, तो कई बार वो अच्छे से पता नहीं चल पाता, तो इसलिए क्या है अपन 3 महीने बाद अपने को परफेक्शन से पता चल जाता है कि हाँ ये ग्याबण है या नहीं है।
2: अच्छा,
1: ठीक छो ना साहब?
0: ठीक
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब आप थनेला रोग के बारे में बता रहे जा।
0: थनेला रोग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वही ये मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जैसा सभी पशुपालक भाइयों को पता होगा, और जो अपने जो पशु की कीमत है वो एक तरह से दूध के ऊपर ही निर्भर है पूरी। अगर मान लो थनेला रोग की वजह से किसी पशु का एक थन खराब हो गया तो उसकी दूध उसकी जो कीमत है वो 1/4 कम हो गई।
1: 1/4 कम हो गई, सही बात।
0: तो और ये क्या है, इसके फैलने के तो कई सारे कारण रहते हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्शन या संक्रमण जिसे अपन कहते हैं वो मुख्य रूप से होता है कि जैसे दूध निकालते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: बछड़ा जैसे दूध पीता है उसके पहले उसके बाद में
1: अच्छा।
0: अपने को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, थनों को अच्छे से धोना चाहिए, फिर दूध निकाल के जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद में जो पशु है वो जमीन पर कितनी देर में बैठता है और वहां से इन्फेक्शन कितनी देर में जाता है। तो जैसे अपने को पता है कि जो दूध की जो कैनाल है वो लगभग 20 मिनट तक खुली रहती है दूध निकालने के बाद में, तो अगर उस 20 मिनट के अंदर अपना पशु जमीन पर बैठ गया तो वहां से इन्फेक्शन जाने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल, और गाँव में तो आपने देखा नड़ूर बड़ा जो कादा में चौका बन गया, बिल्कुल सही कह रहे
0: थे, थनों को अच्छी तरह से धोना भी चाहिए। ये
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इमें नरी बार आपने सोचा जा नरा बाइक खर्च के तो नजर लागी के। आप का मानो छो
0: नजर जैसा, अगर अपन साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में देखें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन मानते हैं तो डोरा कराने में भी कोई बुराई नहीं है, करवा सकते हैं, लेकिन साथ में इलाज भी करवाएं।
1: इलाज जरूरी है,
0: इलाज जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: देखो अपन मंदिर भी जाते हैं लेकिन अपन हॉस्पिटल भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं,
1: सही बात,
0: दोनों ही काम है।
1: हुँ।
0: तो इसलिए आपको जो भी और कुछ करना हो वो भी करें, लेकिन साथ में
1: इलाज जरूरी,
0: इलाज भी करें, इलाज भी करें, ताकि दोनों चीजें साथ में मिलकर काम करेंगी तो जल्दी असर होगा और अच्छा असर होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की भावना भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा,
0: हर काम भी हो जाए।
1: बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब देखो आज खाल जो है गर्मी की मारे आपने बिली बस या विशेष तौर से बसिया जार खाडा में बटे है ना, और तो वहां में नरा सारा जो परजीवी समस्या हो जाओ
0: हाँ,
1: तो कसिया कसिया परजीवी के बार समस्या हो सके छे अमर काई बात को जो से ध्यान रखा अपना पशुपालक भाई।
0: देखो जुए चीचड़ जो है बाहर के भाई परजीवी दो तरह के रहते हैं, एक तो जो बाहर शरीर पे जुए चीचड़े हो या फिर अंदर पेट के कीड़े हो, ये

0: दोनों ही तरह के जो जीव हैं ये परजीवी कहलाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो अंदर वालों जो कीड़े हैं उनके लिए तो अपन पेट के कीड़े की दवाई अपने को हर 3 महीने में देनी ही चाहिए। जो बाहर वाले हैं उनके लिए अपने पास जो एक तेल आता है, ऑयल आता है ना, एक दवाई आती है जिसको अपन पानी के अंदर डाल के और गीला कपड़ा करके और शरीर पे पोचे की तरह फेर देंगे।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद में 2 घंटे बाद में अगर अपन 2 बाल्टी पानी डालेंगे तो जितने भी जुए चीचड़े हैं वो मर के और नीचे जमीन पे आ जाएंगे।
1: अच्छा,
0: शरीर पे से। तो जुए चीचड़ों के लिए अपन वो काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन भी आता है जो पेट के अंदर के कीड़ों को भी मार देता है और बाहर के जुए चीचड़ों को भी मार देता है। तो पशुपालक भाई जो भी हैं अपने सुन रहे हैं वो वाला इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं पशुओं के।
1: अच्छा।
0: तो इस तरीके से तीनों तरीके से अपन काम कर सकते हैं।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, राम राम साहब।
2: राम राम साहब, राम राम।
1: कहाँ से और कौन बोल रहे हैं जो?
2: मैं बोल रहा था रायसल तहसील से, खानेड़ा से।
1: अच्छा, काय नाम छ आपको?
2: फोरलाल जी।
1: अच्छा फोरलाल जी, काय सवाल जी चौपाल मां?
2: मां के ये एक बात है जिको अपना आप ही एक तन में दूध दो पादा रहे उधर का गए हो जो।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब
0: कागज जी यही थनेला रोगी है आप, उसमें क्या गिठान पर बन गई क्या थन में?
2: गिठान भी नहीं बन रही, अपना आप ही वो
0: छोटा हो गया। छोटा हो गया,
2: हाँ।
0: तो ये कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है?
2: ये 8 दिन हो गया।
0: अच्छा, 8 दिन हुए हैं। तो दूध में जैसे जो दूध निकलता है उस थन से, 1-2 धाराएं जो भी निकलती हैं उसमें, मतलब कुछ आपको अजीब दिखता है ऐसे लाल रंग का आता हो?
2: नहीं, नहीं, दूध तो बोका हुआ निकलता है, दूध में तो कोई फर्क नहीं।
0: अच्छा, दूध बोका हुआ निकलता है और बाकी के तीनों थन बिल्कुल सही है?
2: तीनों तन सही है, वो एक तन ही अपना आप ही कम हो गया दूध।
0: तो ये तो काका जैसे अपन वो गादी देखते हैं तो गादी के अंदर कहीं कोई गिठान विठान हो या इस तरह की कोई
2: नहीं है,
0: या कोई चोट लगी हो? चोट भी, चोट से भी हो जाता है कई बार अगर एक ही थन में समस्या है और दूध में कोई समस्या नहीं है तो?
2: जो वो फाल इस साइड को थन से जिम्मे साइड गादी भी थोड़ी फोरी पड़ वाला है।
0: हाँ,
1: तो जांच करानी।
0: तो काका जी ये तो आपको फिर जांच करानी पड़ेगी, या तो वो जो दूध है ना जो निकलता है उस थन से, उस दूध की भी जांच करा सकते हैं अपन लैब में।
1: अच्छा,
2: दूध की जांच करा?
0: हाँ, दूध की जांच करा सकते हैं, उससे कई सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वो क्यों हो रहा है ऐसा।
1: यही कह रहे थे कि दूध की जांच कहाँ हो जाए?
0: दूध की जांच कोटा में हो जाएगी काका जी, यहाँ पे अपने लैब है यहाँ पे मोखापाड़ा में। आप कहाँ पे रहते हो? केशराय पाटन है ना
1: पाटन में भी तो है ना आप?
0: तो नहीं, पाटन में दूध की जांच नहीं हो पाएगी, या तो बूंदी या कोटा।
2: अच्छा, बूंदी हो जाओगी?
1: हाँ हाँ, या तो बूंदी चल जाइयो आप,
0: या तो
1: या फिर कोटा में मोखापाड़ा पा जाइयो।
0: मोखापाड़ा में आ जाओ।
2: और कान का ही कोई इलाज तो कोई नहीं आ पाए आपका?
0: नहीं काका जी, ऐसे बिना देखे नहीं बता सकते, बिना जांच के, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो अपने को पहले जांच ही करवानी चाहिए, क्योंकि अपन बिना जांच के दवाइयां लगवाना भी ठीक नहीं है।
1: हाँ, जांच होगी तो बढ़िया इलाज होगा,
0: और जांच होगी तो फिर बिल्कुल सटीक इलाज हो जाएगा उसका।
1: तो जो थन छोटो जो ना, वो कोई दूध ले रहा जी हो?
0: उसका दूध लिया ना, मतलब एक परखनेली भर जाए इतनी, इसे आप यूं मान लो कि
1: 50 ग्राम।
0: हाँ, 50 ml।
2: तो यो कोटा में लावा तो मैं एक तो यूं 2-4 घंटा में भी ला सका जाने के टाइम?
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, आराम से,
1: आराम से लिया,
0: आराम से लेना।
2: आज कच्ची जगह में लावा कोटा?
0: यहाँ मोखापाड़ा में है लैब है यहाँ पे बड़ी। हाँ, मोखापाड़ा है ये, अपने कैथुनी पोल जाते हैं तब रास्ते में आता है राष्ट्रीय दूध कार्यालय के पास में, तो वहाँ पे अपनी संभाग स्तर की लैब है, आप वहाँ पे लाके जांच करवा लो तो पता चल जाएगा आपने।
1: ठीक जो ना साहब?
0: ठीक, और बल्कि दवाई भी वो वहीं से बता देंगे आपको।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने चौपाल में फोन करियो। हाँ, तो डॉक्टर साहब अब बात यह है कि लूका थपेड़ा नरा लाग रहा है, तो अबारू अपना जो डरा डोर छे गया छे भाषा छे यहाँ के मान लो लू लागी, तो कशा पहचाना अपना पशुपालक भाई भाई लूका चपेटा मागियो और उनको काई फिर वो समाधान करे, प्राथमिक उपचार करे?
0: देखो, सबसे पहले तो यही है कि जो भी अपना पशु है वो चारा पानी बंद कर देता है।
1: अच्छा,
0: है ना, थोड़ा सा बुखार गर्म रहता है शरीर, ठीक है, खाना पीना छोड़ देगा तो उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: सीधी सी बात है ना। और गर्मी में क्या है, सबसे ज्यादा पानी की कमी ज्यादा रहती है, तो जो मूत्र निकलता है वो भी बहुत पीला पीला या गाढ़े रंग का होगा।
1: अच्छा,
0: है ना, तो इन सब चीजों से अपन पता लगा सकते हैं कि भाई इसको लू लग गई। अब उसके बाद में प्राथमिक उपचार तो सबसे पहले तो यही है कि

0: के लिए प्रचुर मात्रा में स्वच्छ पानी हो, और नहीं और थोड़ा ठंडा भी हो, मतलब सामान्य तापमान का हो। अपन बहुत ज्यादा ठंडा ना हो लेकिन गर्म ना हो, एक सामान्य तापमान का पानी उसको पीने के लिए दिया जाए। उसके अंदर अपन जैसे मिनरल नमक डाल सकते हैं, मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं, गांव में छाछ भी उपलब्ध होती है, छाछ भी डाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये सारे काम कर सकते हैं अपन। इसके अलावा अगर मान लो दिन का समय है तो अपन उसको ऊपर, जैसे अपन ने पहले बात करी थी कि बोरी का टाट भिगो के वो डाल सकते हैं, तो उससे शरीर का तापमान काफी हद तक नियंत्रित रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ये सारे काम अपन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो भी अपने निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ पे संपर्क करके इलाज करवाएं उसका आगे।
1: अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात यह हो छे के गर्मी का मौसम अपना जो जानवर छे दुधारू जानवर छे तो वहां के ताई विशेष तौर से खान पान में कई बातों को ध्यान रखने पड़ा कुछ भाई।
0: खान पान में जैसे पीने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की प्रचुर उपलब्धता हो, कि वो दिन में जितनी बार भी पशु पीना चाहे पानी उतनी बार पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर हरा चारा मिल सकता है तो हमें हरा चारा उपलब्ध करवा देना चाहिए। हरे चारे के अंदर भी 85% तक पानी होता है।
1: हाँ।
0: तो उससे पानी की बहुत सारी कमी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा हरे चारे में मिनरल्स भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, तो वो भी उसको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो पानी पिलाते हैं अपन, उसमें अपन नमक डाल के पिला सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जनरली ये परंपरा है नहीं, आमतौर पे हम नमक डालते नहीं है, जबकि नमक बहुत सारे काम करता है। नमक बहुत सारे, और जो मिनरल मिक्सचर जो मैंने आपको बताया था वो मिनरल मिक्सचर के अंदर नमक भी शामिल होता है, तो अगर वो मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तो ये नमक की कमी भी उसकी पूर्ति हो
1: जाएगी। तो विशेष तौर से नमक अबार यहाँ दाम तो देनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल देना चाहिए।
1: तो कैसा कैसा तरीका से दे सके अपना पशुपालक भाई
0: नमक, जैसे अपन बाटा खिलाते हैं उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: ये जो पानी पिलाते हैं उसमें अपन घोल सकते हैं। मिनरल मिक्सचर भी अपने को, जैसे मिनरल मिक्सचर अपन रोटी में रख के भी दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: बाटे में भी डाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: ये मतलब किसी भी तरीके से अपन जिस भी तरीके से अपना पशु खाना चाहे या वो आराम से खा ले, तरीका कोई सा भी हो, बस वो पेट के अंदर जाना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे हरे चारे की आप बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, तो जैसे पूरे हरे चारे ही खिलावा या फिर
0: मिक्स करके खिलाना चाहिए? अपने को पूरा हरा चारा कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। जैसे अपन हरे चारे की कुट्टी काट के उसमें थोड़ा सा भूसा मिला के, उसमें थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर मिला के, तीनों चीजों का मिक्सचर करके खिलाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
1: अच्छा, दलिया वड़े बना भी खिला सकता था अपन?
0: दलिया बाटा तो खिलाएंगे ही सही, बाटा तो अलग चीज है। जैसे बाटा अपन है ना उबाल के खिला सकते हैं, या बिनोले की खल वगैरह है तो गला के खिला सकते हैं, या अपन जैसे मान लो अपन ने 2-3 घंटे पहले गला दिया
1: जी,
0: उसके बाद में अपन उसको खिला सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके अंदर अपन नमक या मिनरल मिक्सचर जो भी डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। अगर अपना पशु दूध दे रहा है तो मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि बिना उसके दूध बनेगा ही नहीं, तो फिर दूध देगा कैसे पशु?
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब अपनी चौपाल को भी टाइम पूरा हो तो जा रही है, तो चलता चलता विशेष तौर से अपना पशुपालक भाइयों के लेकर आप सलाह का तौर पर कहीं खबचाऊंगा।
0: मैं सभी पशुपालक भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि अपने पशुओं का पूरा ध्यान रखें। जैसे अपने अंदर जीव है वैसे ही उनके अंदर भी जीव है, तो उनको ठंडे स्थान पर रखने की कोशिश करें, पेड़ की छाया हो तो वहाँ पे बांधें। दिन में अगर लू चलती है तो लू सीधी उनके शरीर पे ना लगें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पीने के लिए पानी स्वच्छ हो, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है गर्मी में।
1: हाँ।
0: अगर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो उसको गर्मी का असर ज्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा गर्मी इस साल वैसे भी ज्यादा पड़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है।
1: सही बात।
0: तो खुद का भी ध्यान रखें और अपने जो पालतू पशु हैं उनका भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें माँ का करसान बन बया के लेके बताई जे। गर्मी में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं टीकाकरण, इन विषय पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। और किसान मन भाई डॉक्टर जय प्रकाश मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मौका पाड़ा से आज आपने चौपाल में आया और बहुत ही अच्छी बात है ना आपने तय बताई। इनके लेके डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: किसान मन भाई, अब आपका साथी रामू भाई ताई भी दुआ गया, फिर मिलंगा नया पावना के साथ, नया विषय के साथ। तो आज तो चला जा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है नवीन चचैया।
1: प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक 13 मई 2026 बुधवार को कृषि विश्वविद्यालय कोटा का 9वां दीक्षांत समारोह राज्य कृषि और प्रबंधन संस्थान कोटा के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े जी ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि रहे राजस्थान सरकार के कृषि, उद्यानिकी और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा। इस अवसर पर दीक्षांत अतिथि थे डॉ. हरि सिंह गौर कृषि विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के कुलाधिपति श्री कन्हैयालाल बेरवाल। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुआ। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोंकवाल ने सभी का स्वागत किया और विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
2: माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें, साथ ही विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
3: मैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के नवम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ।
2: माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हूं। माननीय श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा, माननीय महोदय, आपका आगमन, प्रेरणापद उद्बोधन एवं मार्गदर्शन निसंदेह इस विश्वविद्यालय को नव दिशा प्रदान करेगा तथा इसे उत्कृष्टता एवं नवाचार की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहयोग सिद्ध करेगा। मैं श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय मंत्री कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास का विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। आपका इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होना न हम सभी के लिए अत्यंत गौरव एवं प्रेरणा का विषय है, अपितु यह हमारे विश्वविद्यालय के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रीमान कन्हैयालाल बैरवाल जी, सेवानिवृत्त IPS एवं कुलाधिपति डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का हृदय से स्वागत करती हूं कि आपने इस नवम दीक्षांत समारोह के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया, जिसके लिए विश्वविद्यालय सदैव आपका आभारी रहेगा। इस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं अकादमिक परिषद के सम्मानीय सदस्य गणों का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूं। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। विश्वविद्यालय के इस नवम दीक्षांत समारोह में आज कुल 358 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है, जिसमें से स्नातक ऑनर्स कृषि के 219, स्नातक ऑनर्स उद्यानिकी के 52, स्नातक वानिकी के 47 सहित स्नातक के कुल 318, स्नातकोत्तर कृषि के 22, स्नातकोत्तर उद्यानिकी के 8, स्नातकोत्तर वानिकी के 4 सहित कुल 34 स्नातकोत्तर उपाधि तथा विद्यावाचस्पति कृषि के 4 व विद्यावाचस्पति उद्यानिकी के 2 सहित कुल 6 विद्यावाचस्पति अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। इनमें से 11 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने हैं, जिसमें 7 छात्राएं सम्मिलित हैं। मैं समस्त पदक विजेता एवं दीक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई व उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कृषि उद्यानिकी और वानिकी के 252 स्नातक, 42 स्नातकोत्तर और 9 विद्यावाचस्पति के छात्र पंजीकृत हुए। विश्वविद्यालय के 3 संगठक महाविद्यालयों के 72

0: विद्यार्थियों ने भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों यथा IARI, BHU और TNAU आदि में स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि विगत वर्ष में कुल 142 विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थाओं एवं सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के तीनों संगठक महाविद्यालयों में कुल 1428 विद्यार्थियों को गत वर्ष में विभिन्न संस्थाओं से छात्रवृत्तियां प्राप्त हुईं। गर्व की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के छात्र श्री गौतम शर्मा ने मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में थांग टा खेल में भाग लेकर कांस्य पदक जीतकर कृषि विश्वविद्यालय कोटा का नाम गौरवान्वित किया। श्री प्रकाश कुमावत BSc ऑनर्स उद्यानिकी ने थार एग्री फाउंडेशन नामक एक NGO की स्थापना की और उद्यमी बने, जबकि सुश्री प्रिया यादव पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होकर महाविद्यालय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग व्यवसाय के लिए कर रही हैं। इसी प्रकार छात्र श्री योगेश कुमार जिठारवाल को भारतीय सेना में चुना गया है। इन सभी विद्यार्थियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी संगठक महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां जैसे जल संरक्षण जन अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, वंदे मातरम 150 वर्ष जयंती, एंटी रैगिंग सप्ताह, संविधान दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, राष्ट्रीय खेल सप्ताह, 134वीं अंबेडकर जयंती का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के बीच 6ठे अंतर महाविद्यालय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह भी आयोजित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा को 1 अप्रैल 2026 से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली द्वारा सदस्यता भी प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा 27 नई तकनीकियों का विकास कर अनुसंधान सिफारिशें जारी की गई। गत वर्ष 6041 समूह पंक्ति प्रदर्शन, 1 मेला, 9 प्रदर्शनी, 32 प्रक्षेत्र दिवस, 37 कृषक गोष्ठी व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक कृषक सीधे लाभान्वित हुए हैं। विश्वविद्यालय के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोटा एवं झालावाड़ द्वारा 5 कच्ची घानी इकाइयों की स्थापना भी की गई है। साथ ही हड़ौती क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 4 प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म किसानों के खेत पर विकसित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा USR के चतुर्थ चरण के तहत कोटा जिले के गणेशपुरा एवं सवाई माधोपुर के खिजूरी को स्मार्ट विलेज विकसित करने हेतु गोद लिया गया है। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा गठित 7 दलों के 28 वैज्ञानिकों ने 35 गांवों में करीब 336 प्रसार गतिविधियों का आयोजन कर करीब 4400 कृषकों एवं अन्य हितधारकों को लाभान्वित किया। विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों के अथक योगदान की सराहना करती हूँ। मैं इस दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल राजस्थान व कुलाधिपति महोदय, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी एवं माननीय कुलाधिपति डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य सभी महानुभावों की गरिमा में उपस्थिति हेतु पुनः हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
1: इस अवसर पर आप हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से दीक्षांत अतिथि के रूप में पधारे श्री कन्हैयालाल बेरवाल।
2: दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि आज से आप सब लोगों पर जिन्होंने विभिन्न डिग्री और पदक प्राप्त किए हैं उन पर विशेष दायित्व आ जाता है कि वो भावी जीवन में जाकर के देश का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। यह सबके आपके कंधों पर भार है। विशेष तौर से आप कृषि विश्वविद्यालय से निकले हैं तो कृषि जगत में, कृषि में, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि जो है अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है, कृषि प्रधान देश है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आती है।

औपचारिक चरण से आगे बढ़ करके अब व्यवहारिक जीवन में आप प्रवेश करने वाले हैं। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 से लेकर के आज तक विभिन्न आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित पाठ्यक्रम यहाँ लागू किया गया है। इस नीति के तहत छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और खेत आधारित अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया गया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इन्होंने विभिन्न संस्थानों से फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी आज देश विदेश में अभी नाम रोशन करेंगे। मेरा ये मानना है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कौशल और उद्यमिता का विकास किया जा सकता है। आज आवश्यकता केवल डिग्रियों की या पदकों की नहीं, बल्कि वास्तव में कौशल विकास के माध्यम से पात्र बनने की है। पात्र बनकर के आप जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग जो नौकरी के चाहने वाले बनते हैं, नहीं बनकर के आप उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार करें, विकास करें, जिसकी बड़ी संभावनाएं हैं और आज उसकी आवश्यकता भी है। आधुनिक कृषि अवधारणाएं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, एग्री बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आदि विधियों के माध्यम से आज इसकी कृषि व्यवसाय को, कृषि को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक शैक्षणिक संरचना की भी बड़ी आवश्यकता है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, तकनीकी प्रयोगशालाएं, दक्षता उन्मुख शिक्षण विधियां विकसित करना एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान में की विश्वविद्यालय ने विशेष कार्य किए हैं, उनके माध्यम से समाज में, देश में कृषि को और आगे बढ़ाने के प्रयास करने की जिम्मेदारी भी आप सब लोगों पर है। विश्वविद्यालय ने लगभग 15,000 क्विंटल से अधिक बीज उत्पादन कर किसानों को दिया है, उन्नत किस्म का बीज दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। भारत की आत्मा गांव में व्यवस्थित है, ग्रामीण प्रधान देश है अपना और कृषि प्रधान देश है। इस कारण से आज जो है कृषि को बढ़ावा देने की, उसके विकास की बड़ी आवश्यकता है कि आज यहाँ से निकले हुए विभिन्न विद्यार्थी जिन्होंने अध्ययन करते हुए बड़ी महारत हासिल की है, वो जाकर के अपने ज्ञान से ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के इस ज्ञान को किसानों तक पहुँचाए, कृषि तक पहुँचाए, इसकी आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या कृषि के साथ साथ कृषि मजदूरों की भी है। ये बहुत बड़ा एक विषय है कि कृषि में काम करने वाले अधिकांश मजदूर बहुत गरीब हैं। हमारे यहाँ का किसान जो है वो वास्तव में बहुत गरीब है, लेकिन उस किसान, गरीब किसान के यहाँ भी जो मजदूरी करने वाला मजदूर है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब वर्ग है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंत्योदय की जो अवधारणा दी, अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति का विकास किया जाए, सबसे गरीब व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए, हर तरह की सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। तो मैं एक यहाँ माननीय कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूँ कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर है वो वास्तव में अंत्योदय की कैटेगरी में, उससे गरीब शायद कोई नहीं, दूसरा नहीं होगा, जिसके पास न कोई भूमि है, न कोई जमीन का टुकड़ा है, और वो अधिकांश समय पलायन से पीड़ित रहता है, क्योंकि उसको वहाँ काम जब नहीं मिलता तो उसको दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। भारत में बहुत बड़ा भूभाग जो है, लेकिन जो देश विश्व का है उसमें भारत के पास बहुत ही कम भूमि भी है और बहुत ही कम पानी भी है। इसलिए आवश्यकता है आज के वैज्ञानिकों की और किसानों की कि वो इस ऐसी परिस्थितियों में खेती को जो है आगे बढ़ाएं। आजकल खेती में रसायनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। आजकल कई बीमारियां इसी से पैदा हो रही है, इसलिए इनका प्रयोग कम करें, साथ साथ जो प्राकृतिक खेती है जो उसको अपनाएं, ताकि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनको, कीटनाशक का उपयोग के कारण से बढ़ रही है, उनका उपयोग कम से कम करें। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कृषि विषयों में अध्ययनरत छात्रों को आज के इस प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी युग में सफल बनाने के लिए उन्हें बहुआयामी कौशल से सुसज्जित करना पड़ेगा। मैं आज शुभकामनाओं के साथ साथ सभी छात्रों से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि वो अब अपना नैतिक दायित्व और अधिक समझें। आज उन पर जो है अध्ययन के साथ साथ, मैंने जैसे पहले ही बताया, दीक्षांत नहीं है, बल्कि अब आप पर बहुत ज़्यादा दायित्व आप पर आ गए हैं, नैतिक दायित्व आ गए हैं, उनका पालन करें, निर्वाह करें।

0: और मैं आज के दिन महत्वपूर्ण यात्रा का जो प्रतीक है, जिसमें आप लोगों ने बड़े परिश्रम, मेहनत और कारण से ये जो यहाँ आपने मुकाम हासिल किया है, किसके आगे भी आपको अपने पूरे जीवन में आगे बढ़ना है, इसका श्रेय केवल व्यक्तिगत आपका आपकी मेहनत है, लेकिन साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके माता पिताओं का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: समारोह में राज्य के कृषि, उद्यानिकी और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपने संबोधन में कहा।
2: प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन का स्वर्णिम दिवस है। ये वो दिन है जब आप अपनी शैक्षणिक जीवन के एक चरण को पूर्ण कर रहे हैं। वो चरण आपने पूर्ण कर दिया है, लेकिन अब व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में आपके नए अध्याय की शुरुआत आज के बाद होने वाली है। आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है, वो सराहनीय है। मैं इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। आपके इस सफलता में आपके माता पिता और गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा है। अब ये आपके आत्मचिंतन और संकल्प का एक समय है। जो आगे आप जाओगे फील्ड में, आपको ये विचार करना होगा कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका उपयोग आप समाज के लिए, किसानों के लिए और राष्ट्रहित में राष्ट्र का कल्याण करने के लिए जितना कर सकोगे, वही आपको राष्ट्र की और किसानों को सबसे बड़ी देन होगी। हमारा भारत कृषि प्रसार प्रधान देश है, वैसे ही राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की 60-70% आबादी कृषि पर आधारित है और राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 55-60% भाग कृषि करने योग्य है, लेकिन इसमें केवल 35-40% कृषि की जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि हमको जल का प्रबंधन कैसे करना है, कुशल सिंचाई सुधार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इस आंकड़े से आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी सिंचाई कम क्षेत्र में की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना का बढ़ावा दिया है। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और 50-70% तक सब्सिडी MIDH में दी जा रही है, स्प्रिंकलर में, PDMC में, और इसके परिणाम भी आए। हम हमारे प्रदेश में करीबन 25% ऐसे एरिया को इस MDH से कवर कर चुके हैं, जो देश में राजस्थान नंबर एक पर है सूक्ष्म सिंचाई में। ये राजस्थान के किसानों की कुशलता को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे यहाँ करीबन 25 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई ये इनके सूक्ष्म संयंत्रों के द्वारा किसान कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे किसानों ने फार्म पॉन्ड और दूसरे तरीके से जल ग्रहण का बहुत अपने आप में अद्वितीय कार्य किया है और उसमें जो भूमि बेकार पड़ी हुई थी उसको काम में लेकर किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाया है और सिंचित क्षेत्र को भी बढ़ाया है। राजस्थान में ऐसी 50,000 से अधिक जल संरचनाएं किसानों ने सरकार के सहयोग से तैयार की हैं और उनसे उनकी आय बढ़ी है, आर्थिक स्थिति सुधरी है। ये विशेष रूप से हमारा राजस्थान, आप जानते हो, मात्र 1% बरसात यहाँ पर होती है और सूखा प्रदेश को मिनिमाइज करने के लिए इस PDMC का बहुत महत्व है। जब हम कृषि के भविष्य की बात करते हैं तो आप समझ जाते हो कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये केवल एक पर्यावरण मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा को

0: बहुत कदर करता है, किसानों की आय पर असर पड़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पिछले कुछ दशकों में हमने मौसम के पैटर्न में पूर्ण बदलाव देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और प्रिसीजन फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को खेती को अधिक वैज्ञानिक, सटीक और प्रभावी लाभकारी बना दिया है। इसमें आप सभी वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी महती योगदान रहेगा और आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर अपने प्रशिक्षण शिक्षण के दौरान आपको मिली होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके आपके अनुभवों का भी फायदा किसानों को मिलेगा। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी समाज में परिवर्तन के वाहक होते हैं। आप ही परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड हैं, आप शिक्षित हैं, आपको दीक्षा माननीय राज्यपाल महोदय ने दी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप आज जिस उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं वो आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विस्तार में, राष्ट्र के निर्माण में, समाज को और किसानों को मजबूत बनाने में आपकी सकारात्मक भूमिका की मैं आशा करता हूँ। और अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ।
1: दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पर घमंड न करते हुए उसका देश और समाज के विकास के लिए सदुपयोग करने पर जोर देते हुए कहा।
2: यही वो अवसर है कि जब विद्यार्थी अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग जीवन व्यवहार में करने के लिए तैयार होते है। हमारे यहाँ तैतरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो आचार्य उसे अंतिम शिक्षा देते थे, आशीर्वाद देते थे और इस पे सदा उसे धर्म का आचरण करने, अपनी शिक्षा पर प्रमाद नहीं करने और सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया जाता था। ये तो समावर्तन संस्कार है, वही आज का दीक्षांत समारोह है। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के अपेक्षा करता हूँ कि अपने जो कृषि शिक्षा अपने विश्वविद्यालय के प्राप्त किए उसका सदुपयोग आप राष्ट्र और समाज के विकास के लिए जाने हेतु आप कृत संकल्पित हो। मैं सभी पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्वविद्यालय की डिग्री सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि आपके जीवन में संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयासों का सम्मान है। मैं चाहता हूँ आप विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा, ज्ञान और अनुसंधान का उपयोग विकसित भारत के लिए करें। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का स्रोत आज भी हमारे यहाँ कृषि और पशुपालन है, इसीलिए इसमें जुड़ी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। मैं ये भी जानता हूँ कि सभी विश्वविद्यालय में जो जो फैकल्टीज होगी वो सबसे अधिक उपयुक्त और लोगों के भले के लिए कोई फैकल्टी होगी, कोई डिग्री होगी तो कृषि की डिग्री है, ये ध्यान में रखिए। अरे अपना जीवन तो कृषि उत्पादन से भी चलता है। दो दिन कुछ मिला नहीं खाने को तो आप तो परेशान होते हैं। वो अनाज कहाँ से आता है? वो तो कृषि से आता है। कोई दूसरे पे आप

0: देखो ये तो वहाँ भी उनको कृषि का ही ध्यान आना पड़ता है, और कृषि में जो अनाज होता है वो अपने जीवन को भी जीवन उस पर ही अपना चलता है, ये ध्यान में रखा। तो आप इसीलिए ये सोचेंगे कि सही कृषि डिग्री एक महत्व की डिग्री है। विद्यार्थी जिन्होंने ये डिग्री ली है कृषि की और खुद की जमीन नहीं, ऐसे लोगों ने एक एक कंपनी बनाई, तो वो कंपनी को भी आप ऐसी खेती कई साल के लिए आप उनको भी दे सकते हैं, करार पे दे सकते हैं, भाड़े से दे सकते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ेगा, उसमें राष्ट्र की संपत्ति बढ़ेगी। ये करना मेरे ख्याल से बहुत जरूर लगता है। तो ये लोगों को ज्ञान देने का ही अपन सोचना चाहिए। दूसरा नंबर है राजस्थान का दूध के बारे में, पहला नंबर है उत्तर प्रदेश, राज्य बड़ा है, लोक संख्या बड़ी है करके, तुम्हारे यहाँ तो लोक संख्या कम है, 8 करोड़ की है, तो भी दूध का दूसरा नंबर है यहाँ से। पर राष्ट्र में भी बहुत से दूध के पदार्थ जाते हैं। तो दूध का व्यवसाय ये गोर गरीब लोगों के जीवन बढ़ाने का या जीवन जगने का एक व्यवसाय है। अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कारित करो, नैतिकता हो, ईमानदारी हो, प्रामाणिकता हो, ये शिक्षा में अभी तक आई नहीं तो अभी आने की जरूरत है। तो भी आगे अच्छे लोग होंगे, अच्छे तरुण होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनने के लिए उससे बचपन से संस्कारित करना, प्रामाणिकता का संस्कार उस पर देना, नैतिकता का संस्कार उस पर आना, ये बात आप किए तो मेरे ख्याल से अगला भारत जो आपने को लगता है हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, तो तब से बनेगा विश्व गुरु। भारतीय सब लोग सुधरे, भारतीय सब लोग अभी अच्छे हो गए, भारतीय सब लोग ये टैलेंट बन गए, इतनी ताकत शिक्षा की ताकत हमारे पास आएगी, नैतिकता आएगी, तो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। और ये सोचकर आप सभी ने काम करना। जय भारत, जय राजस्थान।
1: इस अवसर पर कृषि स्नातक, कृषि स्नातकोत्तर, शोध विद्यार्थियों और विद्या वाचस्पतियों को माननीय राज्यपाल द्वारा उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह के अंत में कृषि विश्वविद्यालय कोटा की कुल सचिव श्रीमती मनीषा तिवारी ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
2: महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े साहब द्वारा नवम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता का आतिथ्य स्वीकार करने एवं गरिमा में उपस्थिति के लिए कृषि विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, माननीय मंत्री कृषि व उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास राजस्थान सरकार एवं दीक्षांत अतिथि श्री कन्हैया लाल बैरवाल कुलाधिपति तथा इस कार्यक्रम के प्रारूपकार कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु महोदय डॉक्टर बिमला डुकवाल का आभार हृदय से ज्ञापित करती हूँ। मैं अन्य विश्वविद्यालयों से पधारे सम्मानीय कुलगुरुगण, माननीय विधायकगण एवं पुलिस अधिकारियों, अन्य अतिथिगणों की अपनी गरिमा में उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। सभी अधिष्ठाताओं व निदेशकों, परीक्षा एवं वित्त नियंत्रक, विभिन्न समिति समन्वयकों व सदस्यों का इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अंत में मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग एवं योगदान देने वाले सभी महानुभवों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी कोटा से प्रसारित इस रेडियो रिपोर्ट में निर्देशन श्री तेजराम मीणा का, संयोजन हिमांशु नामा का, प्रस्तुति सहयोगी नवीन चचैया और प्रस्तुतकर्ता रामनारायण मीणा।
3: अभी आप सुन रहे थे कृषि विश्वविद्यालय कोटा के दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल है और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत में सबसे पहले सुनाने जा रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है से, लकी अली और राम्या की आवाज़ों में, इब्राहिम अश्क का गीत और राजेश रोशन के संगीत से सजा। सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत सुन रहे हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, अमी मिश्रा की आवाज़ में कुणाल वर्मा का गीत और अमी मिश्रा का संगीत। आइए सुनते हैं गीत।

सुनते हैं अगला गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में इरशाद कामिल का गीत और विशाल शेखर का संगीत।

अगला गीत सुनने जा रहे हैं फिल्म मेट्रो से। गायक कलाकार हैं सोहम, बोल हैं सईद कादरी और संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा की, और संगीत है प्रीतम का। लीजिए सुनते हैं गीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म मिशन कश्मीर से शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत और शंकर एहसान लोय का संगीत।

कैसे इस गीत ने कार्यक्रम के रुख को मोड़ दिया था। आइए अब उसी ट्रैक को पकड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। अगला गीत है फिल्म मोहब्बतें से, लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी की गीत रचना और जतिन ललित का संगीत। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगे, लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में आनंद बख्शी का गीत और राहुल शर्मा का संगीत। लीजिए सुनिए गीत।

मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा

0: डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद

0: की घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के कलाकार।

श्रोताओं, कुछ आवाजें वक्त के पार चली जाती हैं, हर दिल में अपनी पहचान बना जाती हैं, और जब सुरों की बात होती है तो हम ऐसे ही कुछ आवाजों की, कुछ गायक कलाकारों के नाम लेते हैं जो स्वतः ही हमारी जुबान पर आ जाती हैं। वो आवाज़ें जो कभी मासूम सी लगती हैं, जो कभी दिल की गहराइयों में उतर जाती है, आज उन्हीं आवाज़ों में से एक अनमोल आवाज़ का हम जिक्र कर रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति के संग सुरों की महफिल को सजा रहे हैं। तो नमस्कार श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। इस कार्यक्रम में जहां हम याद करते हैं उन कलाकारों को जिनकी आवाज ने हमारी जिंदगी को खास बना दिया, आज की एक खूबसूरत शाम समर्पित है ऐसी ही गायिका के नाम जिनकी आवाज में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी है और फिल्मी गीतों की मधुरता भी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई बहुमुखी प्रतिभा की धनी कविता कृष्णमूर्ति की। कविता कृष्णमूर्ति, जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं में हजारों हजारों गीत गाए हैं, उनकी आवाज में एक खास जादू है जो हर दौर के संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना देता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत। ये गीत हमने चुना है फिल्म मिस्टर इंडिया से, कविता कृष्णमूर्ति के साथ, और भी साथियों की आवाजें आपको सुनाई देंगी। गीत की शब्द लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनते हैं, बड़ा प्रचलित ये गीत हुआ था।

ये वो गीत है जिसने कविता कृष्णमूर्ति को घर घर में पहचान दिलाई। एक ऐसा गीत जो आज भी हम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आता है। भारतीय संगीत जगत की उन महान पार्श्व गायिकाओं में से एक, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज, शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ और भावपूर्ण गायन से हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार गीत दिए। ये गीत उन्हीं यादगार गीतों में से एक था। पर अगर हम ये कहें कि उनका जीवन बहुत ही सरल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जीवन संघर्ष, साधना और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। कहते हैं ना, कुछ सपने मेहनत से पूरे होते हैं और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि किस्मत ही बदल देती हैं। तो ये वही चीज थी उनकी, उस आवाज में ये खासियत रही है उनकी कि वो हर भाव को अपनी आवाज में इतनी खूबसूरती से ढाल लेती हैं कि सुनने वाला खुद उस एहसास में खो जाता है। शायद यही वजह रही होगी कि इस गीत के लिए कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से भी एक है। तो आइए सुनते हैं अभी अगला गीत। और अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म 1942 लव स्टोरी से, जावेद अख्तर की गीत रचना और आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में बनाई ये गीत। लीजिए सुनते हैं।

आइए बात करते हैं इनके बचपन की, इनके जन्म की। तो कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ। एक बहुत ही साधारण सा परिवार जहां एक बच्ची का जन्म होता है और जिसकी आवाज आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती है। इनका नाम रखा गया था शारदा कृष्णमूर्ति। बचपन से ही इन्हें संगीत से बहुत लगाव था। कहते हैं जब दूसरे बच्चे खेला करते थे तो

0: तो ये जब छोटी थी तब रेडियो पर घंटों गाने सुना करती थी और लता मंगेशकर की आवाज से बेहद प्रभावित रही है, बहुत बड़ी प्रशंसक। उनके गीत सुनकर कविता कृष्णमूर्ति अक्सर ये कहा करती थी कि ये मेरा सपना है कि एक दिन मैं भी गाऊंगी फिल्मों के लिए। और देखिए, उनका ये ख्वाब भी पूरा हुआ। सुनते हैं अगला गीत, फिल्म जुबेदा से।
1: धीमे धीमे गाओ।
0: ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में बना ये गीत, लीजिए सुनिए।

कविता कृष्णमूर्ति मात्र 8 वर्ष की आयु से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था और उन्होंने संगीत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित बलराम पुरी से सीखना शुरू किया। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े विद्वत रहे हैं और बचपन से ही वे विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी तो बहुत सारे पुरस्कार भी उन्हें मिलते रहते थे। उनकी शिक्षा वैसे तो दिल्ली में हुई थी लेकिन संगीत के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि उन्हें मुंबई जाना हुआ और उनके परिवार में शिक्षा और कला दोनों को महत्व बराबर दिया जाता था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनको पूरी तरह से संगीत में भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और यही चीज़ है कि उनकी आवाज़ में शास्त्रीयता भी है और मधुरता भी, दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। आगे चलकर यही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना पाती हैं, ये भी बहुत बड़ी अपनी आप में अनूठी बात है। ऐसा ही अलग सा गीत देखते हैं, कितने अलग अलग तरह के गीतों को इन्होंने गाया है। एक गीत ऐसा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था, हर बच्चा हर जगह ये गीत जब आया था सुनाई दे रहा था। आइए सुनते हैं गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मोहरा से, उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में है, आनंद बख्शी की रचना है और विजू शाह का संगीत। सुन रहे हैं उदित नारायण का स्वर कविता कृष्णमूर्ति के साथ में, आइए सुनते हैं।

साथियों, कहते हैं कविता कृष्णमूर्ति जब मुंबई चली गई थी तो कहा जाता है कि मुंबई का सफ़र भी उनके लिए आसान नहीं था। कई बार घंटों तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर बैठना पड़ता था और कई संगीतकारों ने उन्हें यह कहकर भी मना किया कि उनकी आवाज़ फिल्म जगत के लिए नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत सारे संगीत निर्देशक के यहाँ वो कोरस सिंगर के रूप में काम किया करती थी। वो कोरस गाती रही और छोटे मौके स्वीकार करती रही और एक दिन वही आवाज़ बॉलीवुड की सबसे बड़ी आवाज़ों में शामिल हो गई। थककर बैठना उनकी फितरत में था ही नहीं, शायद इसीलिए मुकद्दर भी उनके साथ चल पड़ा। नीचे सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत हमने चुना है

फिल्म पापा कहते हैं से राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में बनाई ये गीत। एक अलग रंग, अलग नए भाव को लिए हुए

0: और तभी ये खूबसूरत आवाज़ बॉलीवुड की दूसरी आवाज़ों में शामिल हो गई। लगभग सभी बड़े संगीतकार और गायक कलाकार के साथ इन्होंने काम किया है। जैसे हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आर डी बर्मन, ए आर रहमान, अनु मलिक और जतिन ललित जैसे कई दिग्गज संगीतकारों के साथ इन्होंने बहुत ही सुपरहिट गीत दिए। दोस्तों, कविता जी का जीवन सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने हमेशा संगीत को साधना भी माना। वो घंटों रियाज किया करती थी, कई बार रिकॉर्डिंग से पहले पूरी पूरी रात अभ्यास करती थी और उनका मानना था कि सुर कभी धोखा नहीं देते अगर मेहनत सच्ची हो तो। जिन्होंने सुरों को पूजा बना लिया हो वो आखिर क्यों ना इस परचम तक आ सके। तो ऐसी ही आवाज आज हम सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। और इस गीत में आप देखेंगे कैसा नटखटपन है उनकी आवाज में, जिस तरह से उन्होंने इस गीत को गाया है। यह है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, समीर की गीत रचना और जतिन ललित का संगीत। लीजिए सुनते हैं गीत।
1: क्योंकि तुम हो हटके।
0: इस गीत में हम सुन रहे हैं कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़।

श्रोताओं, बात करते हैं उनके जीवन के एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय की। उनका विवाह प्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम के साथ होता है और दोनों की जोड़ी संगीत की दुनिया में बेहद सम्मान से देखी जाती है। एक इंटरव्यू में कविता जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारा जो रिश्ता है वो सुरों से बना हुआ है। आइए सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म पुकार से। अब ये जो गीत है ये एकदम संगीत निर्देशन ए आर रहमान का है, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

क्या गजब की जुगलबंदी थी। कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की युगल आवाजें अभी हमने सुनी। फिल्म पुकार का ये गीत था कि सेरा सेरा। आइए अब सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कविता कृष्णमूर्ति को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बहुत से पुरस्कार मिले। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से कहना चाहेंगे कि उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया और बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें मिले हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी ने सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी भारतीय संगीत को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कई इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए हैं। जब वे मंच पर गाती थी तो विदेशी दर्शक भी भारतीय संगीत में खो जाते थे, ऐसा कहा जाता है। अब सुन रहे हैं अगला गीत, और अगला गीत है फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। ये गीत भी संगीत की दुनिया, ये फिल्म भी संगीत की दुनिया से ही जुड़ी हुई है। बात कर रहे हैं उस विशेष रूप से उस एहसास की, जिस एहसास में खुशी है और खुशी इतनी है कि दिल झूम उठता है। कहते हैं ना, जब मोहब्बत मुकम्मल होने लगती है तो इंसान को लगता है जैसे कि उसने आसमान छू लिया हो या वो आसमान छू रहा हो। और यही एहसास बड़ी खूबसूरती से बयान करता है हमारा अगला ये गीत, जिसे हमने चुना है फिल्म खामोशी से। सुनते हैं अगला गीत, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में बना ये गीत, पहुंचा रहे हैं आप तक। हम सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति के साथ में कुमार सानू की आवाज। फिल्म है खामोशी।

श्रोताओ, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी कविता कृष्णमूर्ति बेहद सरल और विनम्र रही। ऊंचाइयां उन्हें कभी बदल नहीं सकी, क्योंकि उनकी जड़ें तो संगीत में थी। शास्त्रीय संगीत की मिठास से भरा अगला गीत हम आपको नजर कर रहे हैं, जो उनकी इस ताकत को बताता है कि वो कितनी खूबसूरती से शास्त्रीय संगीत पर अपनी पकड़ रखते हुए सहजता से अपनी गायन शैली को प्रस्तुत करती हैं। वैसे तो उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रतिभा, मेहनत और निरंतर साधना से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, और शायद इसी वजह से उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम में भी बहुत से गीत गाए। आइए सुनते हैं चलते चलते ये अंतिम गीत। फिल्म है देवदास, पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई।

उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार में। आप हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। इजाजत चाहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायागीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: और तब एक खाली शरीर में टूटे हुए सपनों और थकी हुई रूह के साथ जीना पड़ता है हमेशा के लिए। रूह बेजान हुई, जिस्म भी राख हो गया। रूह बेजान हुई, जिस्म भी राख हो गया। तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया। तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया।
1: अगर बेवफा तुझको

0: से।
1: कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ता उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हां दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है, है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का क्या?

कभी कभी आपको रौंद कर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा

0: सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the need